हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है,

शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में प्रस्तुत है हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के

0: महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अर्चना कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रातःकालीन नमन। ईश्वर के नमन से आपका दिन और भी मंगलमय हो जाता है। तो आइए सुनते हैं अर्चना कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

उस पालनकर्ता को नमन के साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है रविंद्र साठे का और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आलोक। जैन धर्म समाधि शतक से पाठ, पाठन स्वर है दामोदर शास्त्री का।

नमात्मा इव जायते निर्यथा तरहु। आत्मा से परमात्मा बनने का ये उपाय है, इस आत्मा की निरंतर उपासना की जाए। जिस प्रकार वृक्ष की लकड़ियों में परस्पर मंथन करने से आग उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये संसारी आत्मा ही निरंतर आध्यात्मिक साधना करते करते स्वयं परमात्मा बन जाती है। बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेया तत्र परमं मध्योपायाद् बहिस्त्यजेत। इस संसारी प्राणी की आध्यात्मिक यात्रा में तीन पड़ाव होते हैं। पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरा अंतिम जो लक्ष्य है वह है परमात्मा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रम से बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्थिति पर पहुंचे और अंतरात्मा की स्थिति से भी परमात्मा बनने का प्रयास करे। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा ति निर्मलः। बहिरात्मा वह प्राथमिक स्थिति है जब प्राणी इस देहादि को आत्मा से भिन्न पदार्थों को आत्मा मान लेता है। इससे ऊपर की स्थिति है अंतरात्मा। इस स्थिति में साधक को राग द्वेष देह आत्मा इन पदार्थों के परस्पर भेद का पूर्ण विज्ञान हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ अंतिम स्थिति है परमात्मा पद की। यह सबसे निर्मल और परम शुद्ध स्थिति है। यो न वेत्ति परम देहात् एवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणम् तप्त्वापि परमं तपः। जो व्यक्ति देह में और आत्मा में भेद नहीं समझ लेता, वह चाहे कितना भी कठिन तप करे, घोर तपश्चर्या करे, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। राग द्वेषादि कल्लोलैः अलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम सतत्वम नेतरो जनः। परमात्म तत्व का साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके निर्मल मन रूपी जल में पूर्णतः शांति रहती है और वहां राग द्वेष की तरंगे नहीं उठती और मन अत्यंत शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अविद्याभ्यास संस्कारैः अवसं

0: संस्कारै स्वतस्तत्वे वतिष्ठते। जो मन अविद्या के संस्कारों से, अज्ञान के संस्कारों में पड़कर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है, उसी मन में अगर ज्ञान के संस्कार डाल दिए जाएं, तो वह स्वतः परमात्मा की साधना के लिए स्थिर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास कर ज्ञान के संस्कार मन में डालने चाहिए, ताकि परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत सरलता से हो जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलोक। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आयु श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी आज की सभा में प्रातः 7 बजे यानी अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्थानीय सूचनाओं का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। 7:30 बजे का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत सदाबहार गीत का।

सुबह के 8:15 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत और 8:30 बजे का समय होगा सुगम संगीत का।

प्रातः के 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 9:30 बाल गोपाल का कार्यक्रम होगा बाल संसार, जिसमें आज का विषय रहेगा चर्चा का माता पिता वंदनीय हैं। साथ ही आपको जानकारी मिलेगी तंबाकू सेवन हानिकारक है और पर्यावरण सुरक्षा हमारा दायित्व। इसके अलावा आपको एक रोचक जानकारी मिलेगी साइकिल का दिन और विशेष होगा कार्यक्रम में कि आक्रामकता से बच्चों को कैसे बचाएं।

सुबह के 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात का मासिक कार्यक्रम, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अपराह 3:10 पर आप सुन पाएंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, और शाम के 5 कार्यक्रम होगा परिचर्चा, जिसमें आकाशवाणी के 90 के सफर के बारे में बात की जाएगी और प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अरविंद सक्सेना, श्री दिनेश राय द्विवेदी और श्री देविदास बंसवाल। शाम के 6:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत, और 7 का समय होगा हमारे किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का, जिसमें चर्चा का विषय होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर नरेश कुमार जैन से, विषय होगा बीज उत्पादन कैसे करें। साथ ही आपको जानकारी मिलेगी स्वच्छ भारत मिशन की। शाम के 7:30 आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी, और रात के 8 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि के 9 आप सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रात रानी के फूल।

0: क्रीडाङ्गणे निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनाओं का कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नमस्कार कोटा। जी हाँ, नमस्कार कोटा। खुशी का निमंत्रण है मधुर मुस्कान। शुरुआत हो चुकी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार कोटा की, और आज मैं आपके साथ हूँ जयती। जो अभी हमने जो बात की ना, खुशी का निमंत्रण है मधुर मुस्कान, वो सीधे दिल को छू जाती है। सच ही तो है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सिर्फ अपने चेहरे पर चमक नहीं लाते, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे देते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। पूरी खुशियों को आपके जीवन में लाने का मौका दे देते हैं। तो कोटा के मेरे प्यारे प्यारे लोगों, चाहे कोचिंग की क्लास का लंबा सफर हो, टेस्ट सीरीज का प्रेशर हो, या फिर कचोरी की दुकान पे लगी लंबी लाइन, एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान सब कुछ आसान कर देती है, करती है ना। मुस्कान वो जादुई चाबी है जो हर उदासी का ताला खोल देती है। तो अपनी इस मधुर मुस्कान को कंजूसी में छुपा कर मत रखिए, इसे खुलकर दुनिया के सामने बिखेर दीजिए। आखिर खुशियों पर पहला हक आपका ही तो है। चलिए इस प्यारी सी मुस्कान के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म साथिया से।

लगता है एक मुस्कुराहट आपके आसपास उजाला भर देती है और देखने वाले को लगता है आहा कितना खुश इंसान है। और वहीं आप अगर गंदी सी शक्ल बना के जाते हो तो आसपास का माहौल ही हो जाता है, अरे यार इससे कौन बात करेगा, ये तो शायद इसका अभी मन सही नहीं है, मूड सही नहीं है, तो एक हंसी का इतना असर पड़ता है। उसी तरीके से संगति का भी असर पड़ता है, वो भला कैसे, तो चलिए जानते हैं आज का विचार। आज का विचार कहता है संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों के साथ करें। जैसे कि चंदन के पेड़ के संपर्क में रहने वाली हर चीज सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ इंसान का चरित्र भी महक जाता है, या अच्छे लोगों का साथ इंसान के चरित्र को महका देता है। वैसे ही हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, धीरे धीरे उनका मिजाज, उनकी सोच और उनकी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं और हम भी धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं, कहते हैं या कह सकते हैं उनका कुछ अंश हमारे में आ जाता है, उनकी आदतें आ जाती हैं। अब कोटा में रहकर पढ़ाई का प्रेशर हो वो तो

जानते हैं। ऐसे में अगर आपका दोस्त कहे कि तुमसे ना हो पाएगा, चल छोड़ घूमने चलते हैं, तो फिर तो क्या आप में हो पाएगा? नहीं। वही अगर आपके पास जय वीरू जैसे शोले वाला दोस्त हो और बोले चल यार होगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, कम नंबर आए हैं तो क्या हुआ, अगली बार दोनों भाई मिलकर कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी आधी मुश्किल वहीं पर समाप्त हो जाती है। इतिहास गवाह है, संगति ने इंसान के भाग्य बदले हैं। कहते हैं काजल की कोठरी में कितना भी सया ना जाए, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। तो दिल खोल कर दोस्ती कीजिए, लेकिन परख कर। याद रखिए, अच्छे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करें, बल्कि वो हैं जो आपके सपनों को पंख दें।

आज आप तक पहुंच रही है और हम कर रहे हैं आपसे बातें नमस्कार कोटा कार्यक्रम में। तो जब हम बात कर रहे थे अच्छी संगति की और संगति से बात करते करते आइए अब हम आपको एक अच्छे एक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो जब हम मालवा की या कहें मध्य प्रदेश की धरती को, खूबसूरत सी धरती को, समृद्ध धरती को देखते हैं तो हमारा सिर सम्मान से झुक जाता है उस महान शख्सियत के आगे जिन्होंने इस साम्राज्य को अपने खून पसीने से सींचा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे न्यायप्रिय ताकतवर महिला शासक लोकमाता माँ अहिल्याबाई होलकर की।

शुरुआत करते हैं 31 मई 1725 से, जब महाराष्ट्र के चौंडी गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। वो किसी शाही परिवार से नहीं थी, लेकिन उनके भाग्य में इतिहास लिखना लिखा था। साल 1733 में सिर्फ 8 साल की उम्र में उनका विवाह पेशवा के महान सूबेदार मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव से हुआ, लेकिन तकदीर ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। साल 1754 में कुम्हेर के युद्ध में उनके पति वीरगति को प्राप्त हो गए। और फिर आया साल 1767, जब विपरीत परिस्थितियों के बीच अहिल्याबाई ने खुद मालवा की कमान को अपने हाथ में लिया और 28 सालों तक राज्य किया।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि अहिल्या बाई को द ग्रेट रीबिल्डर यानी महान पुनर्निर्माता कहते हैं? और वो भला क्यों? जी चलिए हम बता देते हैं वो भला क्यों। क्योंकि जब देश के प्राचीन मंदिरों को बाहरी आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया था, तब अहिल्या बाई ने सरकारी खजाने को हाथ लगाए बिना होलकर साम्राज्य के अपने निजी पैसों से, या कहें अपने निजी कोष से, पूरे भारत का कायाकल्प कर दिया। साल 1780 में वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जो आज हम देखते हैं, उसे पूरी तरह से दोबारा देवी अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। बिहार के गया का भव्य विष्णुपद मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह भी उन्हीं की देन है। उन्होंने सिर्फ मध्य भारत नहीं बल्कि केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक पूरे चार धाम मार्ग का, वहां पर सैकड़ों धर्मशालाएं, कुएं, सड़कें और अन्य क्षेत्र बनवाए ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई तकलीफ न हो। माँ अहिल्याबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे एक कमाल की अर्थशास्त्री भी थी और लीडर भी। उन्होंने अपनी राजधानी को इंदौर से नर्मदा के तट पर बसे महेश्वर शिफ्ट किया। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने मांडू और सूरत से बुनकरों को बुलाया और इस तरह जन्म हुआ आज की मशहूर महेश्वरी साड़ियों का। यानी आज जो हम महेश्वरी सिल्क पहनते हैं ना, उसका क्रेडिट या उसका श्रेय सीधे सीधे देवी अहिल्याबाई को जाता है। उन्होंने कर कम किए, व्यापारियों की सुरक्षा दी और देखते ही देखते इंदौर को एक छोटे से गांव से मध्य भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना दी। अगस्त सन 1795 को 70 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा, लेकिन अपनी विरासत हमारे पास छोड़ गईं। तभी तो आज भी इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है जो उनके नाम की गवाही देते हैं।

तो दोस्तों ऐसी थी हमारी लोक माता, जिन्होंने साबित कर दिया कि नेतृत्व के लिए लिंग आधार नहीं होता, बस जिगर और नियत की आवश्यकता होती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जिस तरह से संगति का असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, उसी तरीके से जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, उसका भी असर पड़ता है। और फिर अगर हम बात करें जो हम करते हैं, उसका भी तो असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज क्या है तारीख, आज है तारीख 31 मई, यानी विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। और हर साल इस दिन हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करने आई हूँ, बस सच सामने रखने आई हूँ जिससे हम रोज गुजरते हैं। इस साल की विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम है वो कहती है आकर्षण का पर्दा फाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। इस थीम का सीधा सीधा संबंध हमारे आज के युवाओं से है जो अक्सर पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के दबाव में आकर इस दलदल में फंस जाते हैं। कॉलेज के नुक्कड़ पर सिर्फ कूल दिखने के लिए या फिर इस डर से कि अगर मना किया तो दोस्त क्या सोचेंगे, हम पहली बार सिगरेट या फैंसी दिखने वाले वेप को हाथ में लगाते हैं या हाथ में लेते हैं। और वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना, अरे यार एक कश से कुछ नहीं होता, तू भाई नहीं है क्या मेरा। और बात सिर्फ शहरों की नहीं है, हमारे ग्रामीण भारत में तो खैनी, गुटखा या बीड़ी को भाईचारे का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शौक या दबाव में शुरू हुई ये लत हमारे शरीर के साथ क्या करती है। आज इस

इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार कोटा से मैं जयती लेती हूँ विदा। कार्यक्रम का संयोजन किया था तेजराम मीणा ने और प्रस्तुति सहयोग था राजेश महावर का।

श्रोताओं, स्वागत है आपका फिल्म संगीत सदाबहार गीत में। और पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन देवियां फिल्म से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत सदाबहार गीत का, और अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म से, और इस गीत को गाया है मन्ना डे ने, और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन ने और गीत को गाया है किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, डारा डारा डारा, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना।

होया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा कोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हा हा हा हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: मैंने खींचा आहा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना।
1: हमने और आपने ये गीत सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, और गायक कलाकार थे किशोर कुमार। गीत के बोल लिखे थे मजनू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था एसजी बर्मन ने।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा
8: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
6: कहाँ?
9: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं अब आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 2 जून को प्रातः 8:15 बजे से फोन इन कार्यक्रम होगा, जिसका विषय है हर्निया रोग के निदान और आधुनिक विकल्प। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर सीपी सिंह से बात कर सकते हैं। समय एक बार पुनः सुन लीजिए, मंगलवार दिनांक 2 जून प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर है 07442341142।

ये सुंदर सा गीत आप सुनने जा रहे हैं शोले फिल्म से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

0: दो तीन हो जाती है।
1: आइए श्रोताओं, आपको एक जानकारी दे देते हैं। सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात, तो कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गीत।
2: चल शुरू हो जा।
1: माफ कीजिएगा, ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चुपके चुपके से, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में।
3: अरे बस बस बस बस, सांपे रुक गया, आगे बढ़।
4: रे
3: रे के आगे क्या है?
1: इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है ST परमन ने।
3: क्या गले में तासीर है,
4: ये बात है तो माँ।
3: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।
4: सा

हा हा दैया लाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चरैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला

0: शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 8:15 हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका लोक धुनों से सजे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, काकर का भैरू लाडला, इसके बोल हैं, आइए सुनते हैं।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अगला लोकगीत आप सुनने जा रहे हैं विश्वामित्र दादी की आवाज में,

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

सुगम संगीत के सभी श्रोताओं का अभिनंदन. पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंकज उदास के स्वर में.

0: बाकी सब कंगा।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत में अगली प्रस्तुति आप सुनने जा रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। आइए अब आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। सुबह के 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें अगली रचना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में, और इसके बोल लिखे हैं मशहूर शायर बशीर बद्र ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए सुनते हैं उनकी ये मशहूर रचना।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुगम संगीत की अगली रचना सुनवाते हैं हम। इसके भी बोल लिखे हैं बशीर बद्र ने, और गायक कलाकार हैं चित्रा सिंह।

इसी नज्म के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में हमारे जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने को है। अब प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉ सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात की।
2: आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉ सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: फुलेरा के पास हिरनौदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियालो राजस्थान में पौधरोपण के लिए

0: 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गई। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
1: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2,000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102

103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुनने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से। श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है सचिन गुप्ता ने।

व्हाट्स योर राशि, ये है अगली फिल्म का नाम जिससे हम आपको गीत सुनाने जा रहे हैं। गायक कलाकार हैं सुहेल सेन और बेला शिंदे। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: देखा?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म।

संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए अब आपको एक सूचना दे देते हैं। सुबह 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों के साथ मन की बात का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, प्रातः 10:55 पर। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लैला मजनू का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहित चौहान और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है नीलाद्री कुमार ने।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:55 पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल संसार।

0: बोलो बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए रविवार आ गया है और मैं ढेर सारी खुशियों के साथ और इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दीदी नसीबन, स्वीकार कीजिए मेरा स्नेह भरा नमस्कार। अरे भाई देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं।

0: ये विधि है, जिया है, दक्षिता है, काव्या है, प्राहिता है और ये सारी प्यारी प्यारी बेटियाँ कार्यक्रम बाल संसार में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बेकरार हैं। तो चलिए आज के नन्हे मुन्ने कलाकारों से आप सबकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी प्यारी प्यारी प्रस्तुति आप सब लोग सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास दो प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम प्रहिता शर्मा है।
0: और प्रहिता के पास में कौन है?
2: मेरा नाम काव्या जैन है।
0: अच्छा प्रहिता, आज आप अपने बाल साथियों को क्या सुनाने वाली हैं?
2: माता पिता के लिए।

0: प्यारे बच्चों, माता पिता वास्तव में वंदनीय हैं। वे केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं, पालनकर्ता ही नहीं, बल्कि हमारे प्रथम गुरु भी होते हैं। वे जीवन भर परिश्रम करके हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और हमारे भविष्य के निर्माण में माता पिता की अहम भूमिका होती है। आया आपको समझ में? और पता है बच्चों, आपका रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चलना, व्यवहार, ये सब दर्शाते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं, आपकी परवरिश किस प्रकार से हुई है। सही बात तो ये है बच्चों, एक संस्कारवान व्यक्ति खुद का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करता है। बिना किसी स्वार्थ के इस संसार में यदि कोई आप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है तो वह सिर्फ आपके माता पिता हैं। बच्चों, एक बार सभी देवताओं में होड़ लगी कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जब परीक्षा ली गई तो यह शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। जितने भी देवता थे वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के निकल गए, लेकिन जो हमारे गणेश जी हैं उनका वाहन तो वो छोटा सा चूहा है। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया, और जब परिक्रमा पूरी हुई तो अपने माता पिता के चरणों में हाथ जोड़ कर बैठ गए। जब सबने कहा कि अरे गणेश, तुमने ये क्या किया, तुम तो यहीं बैठ गए, तो उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही सारा संसार होता है। मेरे माता पिता ही मेरा सारा संसार है, मेरी सारी दुनिया है, इसीलिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। और बिना माता पिता के कुछ नहीं होता। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई शुभ कार्य होता है गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, और जो माता पिता को साथ लेकर चलता है, माता पिता की सेवा भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करता है, संसार में उसका वर्चस्व दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जाता है। आया आपको समझ में?
1: हाँ दीदी।
0: क्योंकि इस संसार में सच्चे मन से यदि आपको कोई दुआ देता है तो भगवान के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं, जो आपको एक अच्छा जीवन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और इस संसार में जीने का तरीका बताते हैं।
1: मेरे मम्मी पापा भी मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं।
0: जैसे क्या क्या बातें सिखाते हैं बताओ?
1: सवेरे उठ के बड़ों के पैर छूना, प्रार्थना

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दीदी मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
3: सुनाओ काव्या।
2: माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, उनके कर्ज चुका पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। माँ की दुआ हमेशा हमें मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह सदैव हमारी तरक्की कराती है। अच्छे कर्मों से फल से ही हमें माँ की ममता मिलती है, पिता से शिक्षा पाकर ही हमें जीवन में सफलता मिलती है।
3: बहुत अच्छे काव्या, बहुत प्यारी सी कविता सुनाई है। प्यारी सी बालिका मेरे पास बैठी हुई है, तो आज आप अपने बाल साथियों को क्या सुनाने वाली हैं?
4: पेड़ एक दिन पड़े बीमार, चढ़ गया उनको तेज बुखार।
3: ओहो, बुखार आ गया।
4: हाँ दीदी।
3: फिर क्या किया?
4: पत्ते जड़ गए सारे, उनके मिलाना उनको कोई उपचार।
3: ओहो, फिर
4: आया बादल डॉक्टर बनकर जोर जोर से पानी बरसाया।
3: अच्छा।
4: सारे पशुओं ने मिलकर खाद का खाना खिलाया।
3: ओहो, फिर
4: आने लगी पत्तियां उन पर, रंग बिरंगे फूल खिले, हुआ बुखार छू मंतर उनका, सभी खुशी से नाचने लगे। दिखते बड़े ही सुंदर थे, छाया फल और फूल मिले, अगर मिले इन्हें पानी और खाद, फिर ये कभी ना पड़े बीमार।
3: बहुत प्यारी सी कविता सुनाई है प्राहिता आपने। सचमुच अगर पेड़ों को खाद पानी सब कुछ टाइम पर मिले तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जब पेड़ ना जो सबसे अच्छे होते हैं, जब आपका बर्थडे आए, जन्मदिन आए ना, तब आप एक पेड़ लगाना। जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, तब तक वो पेड़ फल देने लगेगा, है ना। और पता है जो भी आएगा जाएगा फल खाएगा, फिर बोलेगा प्राहिता के बर्थडे पर ये जो पेड़ है लगाया था, है ना। सबको याद रहेगा ना।
4: हाँ दीदी। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी दीदी।
3: प्यारे बच्चों, जब हम हरे भरे पौधे देखते हैं ना, आपने भी तो देखे होंगे ना, और बागीचे देखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। ये नदी, ये तालाब, ये झरने, ये पहाड़, ये जंगल, ये पेड़ पौधे और जंगली जानवर, ये सब हमारे पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। ये सब हमारी प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब की देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की या किसी संस्था की नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी हम सबकी भी है। स्वच्छ हवा पर, स्वच्छ वातावरण पर और निर्मल जल पर हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। इसीलिए हमें प्रकृति के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। हमें पानी की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए और बिना बात के नल खुला ना रखें, जितनी जरूरत है उसके अनुसार ही पानी को खर्च करें, और वर्षा के जल का संरक्षण भी करना चाहिए। और पता है बच्चों, आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर पड़ी रहती है, बॉटलें इधर उधर पड़ी रहती है, और प्लास्टिक को नष्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लास्टिक की थैलियों का, बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए और प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, बिजली जितना हो सके बिजली की बचत करनी चाहिए, बिना जरूरत के पंखा या लाइटें ज्यादा नहीं जलानी चाहिए। आया आपको समझ में?
4: हाँ दीदी। दीदी हमारे घर के सामने जो पेड़ है ना, जब लाइट चली जाती है तो हम पेड़ के नीचे बैठते हैं।
3: और पता है यातायात के जो साधन होते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। अपने वाहनों को चेक करवाना चाहिए कि उनसे बेवजह धुआं तो नहीं उठ रहा है। और पता है, छोटी छोटी जगह पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। साइकिल सबसे अच्छी होती है ना, ना तो

0: से धुआं उठता है, ना ही कोई खर्चा होता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: प्यारे बच्चों, जब बात साइकिल की हो ही रही है तो आपको बता दे, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस भी है। साइकिल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी साइकिल बहुत अच्छी है। प्यारे बच्चों, रोजाना साइकिल चलाने से हमारा दिल और दिमाग और हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं, हमारा वजन भी नियंत्रित रहता है, मानसिक तनाव भी कम होता है, साइकिल से किसी प्रकार का वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। आया आपको समझ में? और सस्ती और सुलभ साइकिल को रखने के लिए किसी विशेष पार्किंग की जरूरत भी नहीं होती। सही बात तो ये है ना कि साइकिल चलाने वालों को भी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक रहता है, क्योंकि साइकिल चलाने से हमारी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप भी साइकिल चलाने की आदत बना लो। आया आपको समझ में? जो लोग साइकिल चलाते हैं ना, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जैसे आपको बाजार जाना है या मम्मी दुकान पर से कोई भी सामान लाने के लिए कहे तो आप साइकिल से ही जाया करें।
1: हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी साइकिल चलाने का बहुत शौक है।
0: भाई देखो,

0: मुझे तुमसे
1: दी। हाँ, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: विधि जो है वो बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। विधि, क्या सुनाओगे बेटा आप?
8: प्यारी साइकिल पर कविता।
7: ओहो, साइकिल पर कविता सुनाओगे? साइकिल चलाती हैं आप?
8: हाँ।
7: हाँ तो सुनाइए।
8: प्यारी साइकिल, जिंदगी कैसे दो पहियों पे चलती है बता दिया था तुमने, जब पहली बार गिरे थे ना तभी उठना सिखा दिया था तुमने, पीछे बैठा शख्स कभी बोझ नहीं लगता, साथी का असली मतलब बता दिया था तुमने, हर पेडल के बाद कम होती दूरी, मेहनत और मंजिल का रिश्ता समझा दिया था तुमने, आएगा जो कुछ जिंदगी में काम मेरे, वो सब कुछ बचपन में ही सिखा दिया था तुमने।
7: बहुत अच्छे, बहुत प्यारी सी कविता सुनाई है, और साइकिल वाकई ही बहुत काम की चीज है।
9: क्या दीदी, मैं पहले पूछूं?
7: हाँ हाँ जिया, पूछ सकते हो आप, पूछो।
9: हरी डंडी लाल मकान, तोबा तोबा करता इंसान।
7: कौन बताएगा? पूर्वी बताएगी, बताओ।
9: लाल मिर्च।
7: अच्छा,
9: अब दीदी मैं दूसरी पहेली पूछूं?
7: हाँ हाँ पूछो पूछो।
9: ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में है ना सूखती नहीं है?
7: सूखती नहीं है, कौन सी चीज है? प्रहिता आप बताओ।
9: पसीना।
7: हाँ, ये तो धूप में सूखता नहीं है और ज्यादा आता है ना?
9: हाँ दीदी।
7: और पूछना है?
9: हाँ दीदी
7: पूछो।
9: ऐसी कौन सी चीज है जो फटने में आवाज नहीं करती?
7: फटने में आवाज नहीं करती? अरे बाबा, बहुत सिंपल है, दूध है, दूध है ना? सही कहा ना मैंने?
9: हाँ।
7: और पूछना है? और पूछो।
9: कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी कोरा।
7: दक्षिता बताएगी।
9: नारियल।
7: नारियल बिल्कुल सही है ना?
9: हाँ।
7: ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना ना आपको?
9: नहीं।
7: अब कौन अपनी प्रस्तुति देने वाला है? अच्छा, ये जो पूर्वी बैठी हुई है प्यारी सी, पूर्वी आपको क्या पसंद है?
8: खाना बनाना और किसी चीज के बारे में जानना।
7: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आप जिज्ञासु हो।
8: हाँ दीदी।
7: क्या सुनाने वाली हो अपने बाल साथियों को?
8: मैं अपने बाल साथियों को एक लालची कुत्ते के बारे में कहानी सुनाने वाली हूँ।
7: सुनाइए।
8: एक कुत्ता भोजन की खोज में घूम रहा था, रास्ते में उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला, उसने हड्डी अपने मुँह में दबाकर नदी पार करने लगा, नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी, उसने सोचा उस कुत्ते के पास भी हड्डी है, मैं इस हड्डी को छीन लेता हूँ,

0: फिर आराम से खाऊंगा। कुत्ता भौंकने लगा। जैसे ही उसने भौंका, उसके मुंह से हड्डी पानी में गिर गई। वो बहुत दुखी हो गया। उसके मुंह से उसकी खुद की हड्डी भी गिर गई।
1: ओहो, ये तो बुरा हुआ ना। अच्छा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें?
0: हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।
1: बिल्कुल, लालच बुरी बला होती है ना।
0: हाँ दीदी, हाँ कभी कभी तो बच्चे भी लालच करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं।
1: लेकिन प्यारे बच्चों, इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं। आमतौर पर बच्चों के स्वभाव में आक्रामकता जब देखी जाती है, जब हम उनका ठीक से ध्यान नहीं रखते, उनकी बात ठीक से सुनते नहीं हैं, और जब बच्चे अपनी भावनाएं ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, हम उनकी कोमल भावनाओं को नहीं समझते या उनके प्रश्न पूछने पर उन्हें डांट देते हैं, ऐसे में बच्चों में निराशा, डर, थकान, गुस्सा बढ़ जाता है और उनके स्वभाव में आक्रामकता आ जाती है। कई बार घर का तनावपूर्ण माहौल या बच्चे का अकेला रहना भी ठीक नहीं होता। बच्चों को ऐसे व्यवहार से बचाने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी दिनचर्या फिक्स करें। दिनचर्या फिक्स करने का मतलब है कब उठना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब व्यायाम करना है, कब खाना खाना है, कब पूजा करनी है। ये सब बातें बच्चों को सिखाना जरूरी होती है, और शारीरिक व्यायाम योगासन का भी सहारा ले सकते हैं। उन्हें खुले वातावरण में प्राकृतिक छटा का आनंद लेना भी सिखाना चाहिए। उनके आहार को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए, जैसे कि कई प्रकार के जंक फूड होते ना, बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। खुद भी खुश रहें और शांत माहौल रखें, ताकि बच्चों के व्यवहार में सकारात्मकता आ सके। खुले मैदान में खेलना, अच्छे बच्चों के साथ रहना, घूमना भी बच्चों के लिए अच्छा होता है, और बहुत ज्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और फिर भी बच्चों का स्वभाव आक्रामक लगे तो एक बार अच्छे डॉक्टर को या मनोवैज्ञानिक को जरूर दिखाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए, ताकि बच्चों के व्यवहार में सुधार आ सके।
2: जब मैं अपने बहन भाइयों से लड़ती हूँ ना, तो पापा और मम्मी मुझे बहुत समझाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, लड़ना नहीं चाहिए, है ना। पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए, वरना आदत पड़ जाएगी आपकी लड़ने की।
2: जी दीदी, अब कभी नहीं लड़ूंगी। अच्छी अच्छी दीदी, एक प्यारा सा गीत सुना दो ना।
1: भाई अच्छी अच्छी प्राहिता और सब बच्चों को हम एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाते हैं।
3: गीत

0: दीदी ये गीत तो बहुत प्यारा था।
1: प्यारे बच्चों, अभी आप छोटे हैं और लेकिन आपको समझाना जरूरी है बुरी, ताकि आप बुरी आदतों से बचे रहें। आपको पता है ये जो तंबाकू होता है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें मौजूद निकोटीन की अत्यधिक लत लगने पर नशा पैदा होता है, जो कि शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। पता है बच्चों, तंबाकू में मौजूद कार्सिनोजेंस मुंह और जीभ और फेफड़ों, पेट और गले के कैंसर का मुख्य कारण होता है।

0: है। धूम्रपान और तंबाकू रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। रक्तचाप बढ़ने का मतलब समझते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, जो कि नसों में रुकावट पैदा कर देता है, जिससे दिल का दौरा और लकवा होने का खतरा कई ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, कई लोगों को लकवे की बीमारी हो जाती है, ये सब तंबाकू के कारण हो जाती है। तंबाकू जो होता है वो फेफड़ों के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे सांस फूलना, दमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। दांत गंदे दिखते हैं, बहुत गंदे दांत दिखते हैं ना तंबाकू खाने वालों के और गुटखा खाने वालों के।
1: जो लोग तंबाकू और गुटखा खाते हैं ना दीदी, उनके दांत गंदे होते हैं।
0: हाँ बेटा बिल्कुल, दांत गंदे होते हैं, इसलिए कभी भी ऐसी चीजों की तरफ खाना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं, है ना?
1: हाँ।
0: और पता है, इससे जो हमारी त्वचा की रौनक होती है वो भी खत्म हो जाती है। जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है या धूम्रपान करती है, उनकी प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है और हार्मोन भी असंतुलित हो जाते हैं। इसीलिए हमें तंबाकू या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि हमें छोड़ना है और हमारी यह आदत नहीं छूटे तो हमें विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि जल्दी से इसकी लत छूट जाए और हम स्वस्थ जीवन जी सकें।
1: हाँ दीदी।
0: भाई आज तो मजा आ गया, बच्चों से ढेर सारी बातें की और इनकी प्यारी प्यारी प्रस्तुति भी सुनी, चुटकुले भी सुने, लेकिन भाई वक्त का तकाजा है और हमें आपसे विदा लेनी होगी। विदा लेने से पहले आप हमारा पता जरूर नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम बाल संसार द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कोटा। हमारा पिन कोड है 324001 और हमारा ईमेल आईडी है enjoyairkota@gmail.com। आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा और अगले सप्ताह एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। बोलो बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संसार, एफएम 102.3.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, हम आपको एक सूचना दे देते हैं। प्रातः 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात देशवासियों के साथ कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। तब तक के लिए प्रतीक्षा करिए।

0: सर्वेंट्स, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा है
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष है जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही है,
1: कर रही है
0: और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है।

0: और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
1: अच्छा
0: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
1: हाँ।
0: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम

0: में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त। बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूँ।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं तीन चार दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं,
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत मारा पैर में, बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी। बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें।

0: समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाए लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
1: हाँ,
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना। हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना, नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और बहुत मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी,
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
0: वही तो सेम फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म।
0: ओह।
1: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी।
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी,
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई। तो उनके साथ काम करके

0: बहुत कुछ सीखा. उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद.
1: हाँ, जी जी, उसके बाद ही.
0: हाँ, तो मस्ती में की बस. और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी.
1: अच्छा.
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ. तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी. तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी.
1: हाँ.
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी जी.
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी.
1: जी, जुगनी.
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है.
0: देखे
1: अच्छी
0: हाँ. तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब.
1: हाँ.
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है. तो मैंने कहा नहीं, ये तो सिनेरियो ठीक है अभी. तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी.
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन. सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना. सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर. हाँ. पारिवारिक तरीके. हाँ, से काम. हाँ, कर रहे हैं.
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से. तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके. तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको, ये साधना जी कहाँ है आजकल. तो उन्होंने बताया यही है. तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ. तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत.
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है.
0: हाँ.
1: तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था.
1: अच्छा.
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे. अच्छा. ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे.
1: हाँ.
0: कि ऐसा ही करना है. और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी.
1: जी. हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा.
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए. वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके.
1: अच्छा. मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा.
0: वो किस्सा मैंने बताया. मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है. तो मैंने कहा नहीं करूंगी. तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है. तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम. हाँ. और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ. और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने. तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने. इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए. फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे. चौथी बार मिले, अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ. तो मैंने कहा कि अच्छा. तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो. मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते. इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा.
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली.
0: शादी कर ली, बताइए अब. हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर.
1: हाँ.
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे.
1: अच्छा.
0: फिर
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए. हाँ. थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी.
0: होता ना दिमाग में शादी, फिल्म लाइन की लड़की है.
1: हाँ.
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी. लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने. फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें.
0: ये रात भीगी भीगी.

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइकली तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी,
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म। हाँ। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा।
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते।
1: हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अच्छा। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजा रे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी,
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था। चंदन चंदन

0: बहुत
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
1: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
0: जी, बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी।
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता सुनते रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
1: ये बात है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी। तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी

0: आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं,
0: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
1: हाँ, अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि अपने मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी को ही, अच्छा तो बोले 100%। अब देखते हैं क्या होता है।
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ।
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ। ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
1: हाँ,
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ, हाँ, पर आए हैं। हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की। और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये
0: होता
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है, और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ, आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ।
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा,
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियाँ, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। अच्छा। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहले।
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को

0: को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती
1: हाँ।
0: थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगता है विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: टू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की जश्न।
4: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: लॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल

0: रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता

0: भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है।

आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों,

अजीब वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों,
रात में

विचारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है।

और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के

0: बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितम्

0: अमाप्नोतु शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अंगं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह संबद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई, आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंछी जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूड।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के
1: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय

बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में 2 स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सबीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया, जिसे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन

सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछो को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं, आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठकर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और बाद में हमें लगता है कि अरे, थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर।

अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे। कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक

कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विदा के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। मुझे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कहीं नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखता है कि लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है पर

लेकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं। क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से? ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यही था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी की बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को

केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूँ और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता, जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के

0: मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर

0: देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के

0: बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी

0: के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर, यानी लेक सिटी उदयपुर, राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ,

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मन।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस फ्रीक्वेंसी पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 3:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो किड्स, मगर उससे पहले समय है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा तराना। फिल्म है सपनों का सौदागर, गीत को गाया मुकेश शारदा और साथियों ने।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये एक गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: और डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
3: देसी,
2: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव।
4: डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
4: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
4: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मनचाही गीत।

0: सकती। तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई सिंदूर।
0: ओह डेजी।

0: मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: अच्छा छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी हाँ
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
3: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
3: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
2: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
2: ओके
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
2: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो, लेकिन क्या

0: ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है।
1: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
0: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
0: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: ओ डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
1: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
1: Please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: डेजी नहीं, डेजी ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा।

0: मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
1: हो, डॉक्टर रामदास।
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह धुतकार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
1: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसा ना
1: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो नो, क्यों डॉक्टर?
2: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उऋण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हांफ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर, डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।

0: डॉक्टर मुझसे गलती हो गई डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा
0: डॉक्टर,
1: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
0: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
0: हाँ, हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसे किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ आज उसे ही पहने। हाँ वो डेजी हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे। चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
2: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: डेजी
2: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं डेजी सुनो तो।
2: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते।
0: नहीं नहीं डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
2: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो,
2: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
2: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: था। डेजी, डेजी,
2: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी

0: me, Daisy. Daisy, तुमने तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है, Daisy.
1: नहीं, लॉरेंस, नहीं. नहीं, लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है. ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? ठहरो, ठहरो बेटा, खुद बुला के लाती हूँ. डॉक्टर, डॉक्टर! मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई. डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे. मैं मूर्ति बनी खड़ी रही. मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई. मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे. फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी. की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था. मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी. आप क्या सोचने लगे?
2: एक छोटी सी बात.
1: क्या?
2: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र

0: नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
1: जी,
0: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी।
0: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: ही हैं।
0: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
1: जी, बिल्कुल।
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
1: जी,
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी।
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
1: जी,
0: रावल जी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने, और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें
0: दिया गया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी

0: आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
0: वाह क्या बात है,
1: हेमंत कुमार,
0: हेमंत कुमार की आवाज में।
1: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
0: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
1: हाँ
0: हाँ जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चल

0: करते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
1: जी,
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी।
1: हाँ।
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा।
0: सब तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।

0: जी
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
0: जी
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
0: विवाह,
1: यूनियन था
0: हाँ वो संपन्न हो
1: विवाह
0: गया।
1: का, तो वो खुशी
0: जी
1: खुशी उसकी समापन हुआ।
0: जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
1: एक
0: उस
1: पानी बन के
0: दाम्पत्य
1: रही,
0: जीवन में।
1: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
1: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
0: वाह,
1: मतलब
0: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
1: ऐसी
0: में की
1: ही।
0: गई
1: हाँ
0: नाना नानी के द्वारा।
1: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति

0: के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
1: जी।
0: और खैर वो तो बड़े इंसान थे लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
1: घर में एक आम पिता की
0: आम
1: तरह
0: पिता की तरह
1: जी।
0: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ

0: कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
1: जी, बिल्कुल,
0: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
0: जी, जी।
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी,
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: एक मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। हाँ। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
0: हाँ,
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ। और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
1: हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
1: हाँ, जी।
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
1: जी,
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
1: बहुत कुछ।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी,
0: ये यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त, लिखी
1: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा
0: अंकुर
1: हुआ
0: पैदा
1: और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे

0: घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत।
0: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
0: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: गाना
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक

0: छोटा सा कस्बा बड़नगर
1: जी,
0: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
1: अच्छा। हाँ,
0: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी।
0: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी।
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
1: बिल्कुल। वो
0: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हरेक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास। हाँ, आज भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: ने आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल कि जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख

0: करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आकाशवाणी की 90 सालों की उपलब्धियों पर एक परिचर्चा। विषय है भारत में रेडियो प्रसारण की स्वर्णिम यात्रा। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रसारण अधिकारी

0: श्री डीडी बंसवाल, इतिहासकार डॉक्टर अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ रेडियो श्रोता और लेखक श्री दिनेश राय द्विवेदी, और इस परिचर्चा का संचालन कर रही हैं श्रीमती पुखराज भाटिया।
1: आवाज का श्रोताओं के साथ एक ऐसा गजब का भावनात्मक रिश्ता है कि श्रोता आवाज के साथ जुड़कर दृश्य अपने आप गढ़ने लग जाते हैं। रेडियो भावनाओं, सूचनाओं, जागरूकता, संदेश, शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने का एक बेहद सशक्त, सरल, सुलभ और सस्ते माध्यम के रूप में उभरा था और इसी पहचान के साथ 90 वर्षों के बाद आज भी कायम है। तो आज की परिचर्चा में हम इसी 90 वर्षीय यात्रा की बात करेंगे। हमारी आज की परिचर्चा का विषय भी यही है, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डीडी बंसवाल साहब, जो कि आकाशवाणी दिल्ली से रिटायर्ड हैं वरिष्ठ प्रसारण अधिकारी के बतौर, और 20 साल आपने हिमाचल प्रदेश में रेडियो को अपनी सेवाएं दी और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिमाचल के लोगों से ऐसा आपकी आवाज का, आपके कार्यकाल का प्रेम रहा कि हिमाचल ने आपको बहुत जल्दी छोड़ा नहीं, लेकिन बाद के वर्षों में आप दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो ये रही कि आपने 3 बार हैट्रिक की। आकाशवाणी का जो वार्षिक पुरस्कार है 3 लगातार सालों में आपने जीता। सो ही इज विद अस, हमारे साथ हैं वो। हमारे साथ हैं श्री दिनेश राय द्विवेदी जी, जो एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे आकाशवाणी के श्रोता है। उनका कहना है कि मैं सन 65 से पूरी तरह से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं। आपको मैं बताना चाहूंगी वो एक लेखक भी हैं और कहानीकार भी हैं, मुख्य रूप से गद्य लेखन में उनकी विशेष रुचि है और कम से कम 1500 आर्टिकल उनके अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर अरविंद कुमार सक्सेना जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, लेखक हैं। 7 बुक्स उनकी, इतिहास पर उनकी 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 25 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 11 विद्यार्थियों को आप PhD करवा चुके हैं। सो ये महान विभूतियां, ये सभी प्रबुद्ध जन आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन प्रबुद्ध जनों के साथ इस स्वर्णिम यात्रा का आस्वादन करते हुए आपके साथ चलूंगी मैं भी, पुखराज भाटिया, आपकी बहुत पुरानी दोस्त और आपकी पुरानी होस्ट भी, आज की होस्ट भी। तो आप सभी को मेरा और सभी प्रबुद्ध जनों का नमस्कार। स्टूडियो में हम सबसे पहले अपने मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करके नमस्कार करते हैं। साहब, आप सभी को नमस्कार।
2: धन्यवाद आप सभी को
0: जी।
3: नमस्कार
0: जी।
4: नमस्कार।
1: आज का विषय बहुत अहम और वृहद भी है और चुनौती यह है कि ये जो 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा है, इसको हमको 1 घंटे की परिचर्चा में समेटना है, सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, सभी पड़ावों पर एक दृष्टि डालते हुए। तो आइए सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं कि जहां अलग अलग रिसोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि 18वीं शताब्दी से ही रेडियो का लगभग प्रारंभ हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए हम आज जहां डिजिटल रेडियो के युग में खड़े हैं वहां खड़े हैं। तो ये 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने थ्योरी और गणित के माध्यम से ये सिद्ध किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना तार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती हैं। ये शायद जो विद्युत चुंबकीय आविष्कार था तरंगों का, ये रेडियो के मूल में, नींव के पत्थर के रूप में है। तो सबसे पहले सक्सेना साहब, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आप इस बिंदु पर कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे श्रोताओं के लिए।
4: नमस्कार। मैं जिस वक्त आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो मैं ध्यान देता हूँ कि प्रथम रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया था 25 दिसंबर 1914 जब तत्कालीन पोप ने एक संदेश दिया था क्रिश्चियन लोगों

0: के लिए वो था जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस का एक बधाई का संदेश। वो पहला रेडियो प्रसारण जो मेरी स्मृति में है, और रेडियो के महान घोषक जो हुए रेडियो सिलोन के अमीन सयानी
1: जी,
0: ये उनकी रिसर्च थी
1: जी। तो सक्सेना साहब ये बताइएगा कि आप तो खैर इतिहासकार हैं, हम लोगों ने तो डिफरेंट रिसोर्सेस से संदर्भों से आंकड़े एकत्रित किए हैं। ये भी सुनने में आता है कि 1886-87 में हेनरी हर्ट्ज जो थे उन्होंने विद्युतीय तरंगों की जो बात है उसको बिल्कुल सही बताया था, और 1890 में एक इटालियन वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में एक टेलीग्राफिक संदेश सबसे पहले भेजा था, और वो ईयर था सन 1900। आपने फरमाया कि 1914 में पहला प्रसारण हुआ था, तो इसका मतलब ये सभी तथ्य आपस में लिंक करते हैं, लिंक होते हैं। आइए रुख करते हैं हम अपने, हमारे जो मेहमान हैं आकाशवाणी दिल्ली से रिटायर्ड वरिष्ठ प्रसारण अधिकारी आप हैं डीडी बसवाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो काल था 1923 से प्रारंभ होके फिर 27 और फिर 30 और फिर 32 के एरा में हम आए, जिसमें विभिन्न तथ्य ये बताते हैं कि इसमें रेडियो कई बार सरकार के आधिपत्य में गया, कई बार ये निजी कंपनियों के आधिपत्य में गया, तो इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे
2: जी। मैडम भाटिया जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इस संस्था के साथ जुड़ने के साथ साथ
1: जी
2: मुझे 90 वर्ष का उत्सव मनाने का अवसर मिला है
1: जी, जी, जी,
2: और मैं उसमें हिस्सा ले रहा हूँ
1: जी।
2: ये मेरी रोजी रोटी भी रही, इससे मेरा परिवार चला, मेरा जीवन चला
1: जी,
2: मेरे को ज्ञान विज्ञान की पूरी जानकारी मिलती रही, और समय के साथ साथ मैं अपडेट होता रहा। ग्रामीण अंचल से निकलने के बाद जब एक बहती प्रवाह में आदमी आ जाता है तो एक पुरानी कहावत है कि सठ सुध रहे सत संगत पाई, मूर्ख लोग भी अगर अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनको भी ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, तो मैं उन्हीं में था। यहाँ पर एक ऐसी संस्था है अद्भुत, इसके अद्भुत इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो विविधता है, इसके प्रसारण की जो प्रस्तुति है, यहाँ के जो प्रसारण कर्मियों की कला है, साधना है, वो माँ सरस्वती की कृपा के बिना संभव ही नहीं है
1: जी जी,
2: और उसका मुझे भी प्रतिफल मिला, मुझे लाभ मिला
1: जी।
2: भाटिया जी आपने बोला रेडियो के प्रसारण के लिए, मैं थोड़ा आपको अपडेट कर दूँ
1: जी।
2: 1892 में रेडियो की शुरुआत अमेरिका में हो चुकी थी और रेजिनाल्ड नाम के फैशन डैन एक
1: जी जी जी
2: प्रसारण करता थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की
1: जी
2: थी।
1: जी
2: क्योंकि अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा
1: जी,
2: और उसके साथ साथ जो भी उसने चीजें तैयार की उसका कॉमर्शियल करना, उसकी मार्केटिंग करना, उससे पैसे कमाना, यही कारण रहा कि रेडियो का आविष्कार हुआ, एक यंत्र तैयार हुआ और वो हमारे आप सबके बीच में आ गया
1: जी।
2: अब आप आगे हमारे प्रसारण के लिए, तो इसके बाद बीबीसी शुरू हुआ था 1920 में
1: जी,
2: क्योंकि ये ब्रिटिश काल था, यहाँ पर भारत अधीन था, तो जो एक प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने उसकी शुरुआत की, जैसे आपने शुरू बताया
1: जी,
2: ये बिल्कुल सच है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अंत में बड़े शहरों के नागरिकों की मांग के मुताबिक इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास लिया
1: जी,
2: और इस तरह से इसकी शुरुआत हुई
1: जी। हाँ
2: 1920 में तो बीबीसी शुरू हो गया
1: जी,
2: भारत में 1923 में निजी कंपनी ने किया था
1: जी। हाँ जी बिल्कुल,
2: और इसका विधिवत जो प्रसारण था 1927 से हुआ
1: जी बिल्कुल।
2: 1936 में 1 जनवरी 1936 में दिल्ली रेडियो स्टेशन खुला
1: और तब इसे AIR नाम मिला,
2: नहीं 8 जून 1936 से ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम रखा
1: जी, AIR जी
2: जी
1: जी।
2: और एक और अद्भुत बात बताया, 1947 में हमारे यहाँ सिर्फ 9 केंद्र थे
1: जी,
2: जब अखंड भारत था
1: जी,
2: जिसमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली
1: जी

0: पाकिस्तान, लाहौर, ढाका और पेशावर,
1: ये
0: 9 केंद्र थे।
1: बिल्कुल,
0: इसमें 3 केंद्र पाकिस्तान में चले गए।
1: जी हाँ,
0: लाहौर,
1: ढाका
0: और पेशावर।
1: जी बिल्कुल,
0: बाकी 6 हमारे पास थे।
1: जी,
0: आज हम इसकी विकास यात्रा को अगर देखें तो लगभग 450 से ज्यादा हमारे प्रसारण केंद्र हैं। तो इसकी जो शब्द दिया है बहुत ही सुंदर कि रेडियो के स्वर्णिम, इससे बड़ा और स्वर्णिम अवसर और क्या हुआ कि हमने इस क्षेत्र को कितना व्यापक बढ़ाया है,
1: व्यापक
0: कितना
1: बनाया
0: आगे बनाया है।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई।
1: जी हाँ, और जब आप ये स्वर्णिम यात्रा की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि 1950 से 1980 का जो जितने दशक थे वो सब रेडियो के स्वर्णिम काल माने जाते हैं।
0: हाँ,
1: क्योंकि उस समय बिना का गीतमाला, जयमाला प्रोग्राम, देन आपके खेती गृहस्थी, महिला प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम, बहुत सारे मतलब जनजीवन के हर पक्ष से जुड़े हुए कार्यक्रम और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे जो लोगों को।
0: ये 1957 में
1: जी
0: विविध भारती की शुरुआत हुई।
1: जी जी जी।
0: और 1957 में ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1957 में वी गोपाला स्वामी थे जिन्होंने सबसे पहले अपने घर विट्ठल विहार को निजी स्टेशन बनाया, पहला निजी स्टेशन, और उसमें उन्होंने आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया क्योंकि ये तरंगों की बात थी, हवा की तरंगों की बात थी, विद्युतीय चुंबक की। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रसिद्ध किया आकाशवाणी नाम को, जिसमें जनमानस का सहयोग मिला।
0: आकाशवाणी का मतलब है देवताओं की वाणी,
1: देवताओं की वाणी, देवलोक से आने वाली वाणी।
0: और इसमें आज भी वो तत्व और सत्य पर आधारित है।
1: जी,
0: कोई भी आपको श्रोता ये कहता हुआ नहीं मिलेगा
1: जी
0: कि हमने आकाशवाणी से सुना और वो गलत है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आकाशवाणी का प्रसारण भी
1: बहुत है। हाँ, इसमें
0: और भी बहुत से मीडिया काम करते हैं, वो जिम्मेदारी से बचते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन आकाशवाणी हमेशा जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेके चला है।
1: जी बिल्कुल।
0: और उसने समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया है।
1: जी बिल्कुल। द्विवेदी साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। दिनेश राय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, लेकिन आप लेखक भी हैं, आपकी गद्य लेखन में बहुत रुचि है। और आपने फरमाया कि आप 1965 से एकदम सतत श्रोता रहे हैं आकाशवाणी के।
0: जी।
1: तो मैं आपके इस अनुभव के बारे में थोड़ा सा आपकी जबानी सुनना चाहूंगी कि आकाशवाणी की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं एक प्रबुद्ध श्रोता होने के नाते।
2: मैं अपनी बात बताऊं।
1: जी,
2: मैं बाणा से हूं।
1: जी।
2: और वहां 1960 में तो बिजली आई।
1: जी अच्छा।
2: और विद्युत उपकरण वहां बिल्कुल नहीं थे उसके पहले। फिर रेडियो आने में समय लगा।
1: जी।
2: 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के दौरान पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगाया गया और उनको एक रेडियो से जोड़ा गया जो नगर निगम का, नगर पालिका का रेडियो हुआ करता
1: जी,
2: था।
1: जी, जी, जी।
2: तो वो जितने भी समाचार बुलेटिन होते थे आकाशवाणी के उनको उन लाउड स्पीकर पर प्रसारित करता था।
1: ओके।
2: और हम उस समय स्कूल जाते वक्त, स्कूल से लौटते वक्त, जहां भी वो प्रसारण होता रहा मिलता, हम वहां जाकर के खड़े हो जाते और उस प्रसारण को सुनते। तो सबसे पहले उस वक्त की मुझे एक नाम बहुत याद है, देवकी नंदन पांडे का।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: वो
1: बिल्कुल।
2: मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जाने जाने वाले
1: न्यूज
2: रीडर रहे, देवकी नंदन पांडे।
1: बिल्कुल।
2: और जब वो बोलना शुरू करते थे
1: जी
2: तो ऐसा लगता था कि जो भी ये व्यक्ति कहेगा
1: हाँ,
2: वो सत्य से अलग हो ही नहीं सकता,
1: हो ही नहीं सकता, ब्रह्म वाक्य जैसे।
2: हाँ, बिल्कुल वैसा ही।
1: बिल्कुल।
2: और वो जो 5 मिनट या 15 मिनट का जो बुलेटिन हुआ करता था उस वक्त, उसको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह सड़क पर
1: खड़े होकर,
2: खड़े होकर के भी पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल।
2: वहां से हम लोगों का परिचय हुआ।
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: और फिर उसके बाद मेरे ख्याल है मुझे तो फिर लोगों ने रेडियो लेना शुरू किया, वाल के रेडियो हुआ करते थे।
1: जी, जी, जी।
2: तो सबसे पहले पान की दुकानों में रेडियो आया।
1: जी।
2: नाई की दुकान में रेडियो आया। तो इस तरह की जो दुकानें थी वहां रेडियो आया, तो नाई की दुकान पे लोग जाकर रेडियो सुनते थे।
1: जी, हाँ।
2: पान की दुकानों पर जाकर के रेडियो सुनते थे।
1: जी, जी, जी।
2: सुबह आकाशवाणी से शुरू होती थी, विविध भारती से प्रोग्राम शुरू होता था।

0: तो शाम को जो है फिर रेडियो सीलोन शुरू हो जाता था, लेकिन रेडियो सीलोन का एक सीमित समय था। दिन में लोग उस वक्त ये उर्दू सर्विस बहुत सुना करते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दोपहर के समय। और इस उर्दू सर्विस से और विद भारती से आकाशवाणी को ज्यादा जानने लगे लोग।
1: जी बिल्कुल, जानने लगे, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सक्सेना साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप इतिहास के ज्ञाता हैं। ये सुनने में आता है कि पहले जब रेडियो सेट्स आए थे, अस्तित्व में आए थे, तो घर पे रेडियो सेट रखने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप?
2: जी, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था
1: जी
2: रेडियो लाइसेंसिंग
1: जी,
2: और जब आजादी मिली थी तब भारत में केवल 80,000 करीब लाइसेंस धारक थे, और जिनके पास लाइसेंस नहीं होता था उन पर कोर्ट केस भी चलाया जाता था।
1: अच्छा,
2: तो ये बात हमारे बचपन तक थी, और मैं समझता हूँ 1965 तक ये बात थी कि बिना लाइसेंस के रेडियो खरीदना नहीं होता था
1: जी, जी।
2: और अगर किसी का रेडियो या ट्रांजिस्टर चोरी चला जाए तो पुलिस इंक्वायरी जब होती थी तो उसमें कई कानून थे, 166 बदल नहीं सकता वो। तो ये लाइसेंस की फीस होती थी
1: जी।
2: अंग्रेजों का एक डेकोरम था, डिसिप्लिन था, उसके अंतर्गत उन्होंने ये प्रारंभ किया था।
1: 15 रुपए सालाना फीस हुआ करती थी, और 3 तरह के वो लाइसेंस के कलर रखते थे, पासबुक रखते थे, जिसको रेवेन्यू स्टैम्प से रिन्यू किया जाता था। आम आदमी के लिए उसका रंग नीला था, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सफेद था, और जो राजनयिक और रक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये रंग लाल था
2: जी।
1: तो इस तरह की व्यवस्था थी। बहुत सुनने में बहुत अजीब लगता है कि घर पे रेडियो सेट रखने के लिए भी लाइसेंस, लेकिन क्या सक्सेना साहब आप थोड़ा सा और बताएंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ये शुरू हो गया था कि रेडियो बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें रेवेन्यू के अलावा शायद वो लोग इनसिक्योर भी थे, असुरक्षित थे कि भारतीय क्या हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या क्या आंदोलन चल रहे हैं, ये भी जानना चाहते थे। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप?
2: रेडियो देश काल और वातावरण को स्पष्ट करने का मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ साधन रहा
1: जी।
2: और रेडियो ने डे टू डे अपने आप को टाइम स्पीकर की तरह से सिद्ध किया है
1: जी, जी, जी।
2: जैसे उस वक्त की बात जब आती है, रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था
1: जी।
2: तो लॉर्ड इरविन जो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे,
1: हाँ जी,
2: उन्होंने ही इसमें एक तरह से 1930 से शुरुआत की थी इसकी, जो बाद में बंद हो गया, बाद में 36 में प्रारंभ हुआ या उसका विकास हुआ। तो अंग्रेजों ने ये किया कि पहले रेडियो के माध्यम से भारत को अनुशासित करने का यत्न किया। अभी जो वकील साहब बता रहे थे लाउड स्पीकर, ये अंग्रेजों ने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था
1: जी, जी।
2: और उस समय लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, लोगों को सुनाया जाता था। फिर लॉर्ड वेवल जो भारत में रहे, उन्होंने भी रेडियो पर अपनी स्पीच दी, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी अपनी स्पीच दी। तो ये लोग उस समय को बताते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या कर रहा है, मुसोलिनी क्या कर रहा है, ब्रिटिश फौजें क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा INA नेता सुभाष चंद्र बोस की सेना
1: जी,
2: वो क्या कर रही है
1: जी, जी।
2: इस सबको बताना।
1: तो रेवेन्यू प्लस ये दोनों ही मकसद थे,
2: दोनों ही मकसद थे
1: और जी। फिर कालांतर में ये लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, हमारा आकाशवाणी हो गया
2: जी,
1: हमारा AIR हो गया
2: जी।
1: तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। चलिए बसवाल साहब, मैं आपके पास आती हूँ। हम बात करते हैं रेडियो के लोगों की, आकाशवाणी के लोगों की, और उसके साथ ही इसकी संकेत धुन की। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आप हमारे श्रोताओं से साझा करेंगे।
3: संकेत धुन के बारे में तो सक्सेना जी बहुत विस्तार से बताएंगे
1: जी,
3: क्योंकि
1: जी,
3: इन्होंने
1: जी,
3: बहुत अच्छा उसमें तैयारी की है
1: जी, जी।
3: हाँ, हम लोग जो 90 वर्ष रेडियो के या आकाशवाणी के स्वर्णिम काल की बात कर रहे हैं
1: जी, हाँ।
3: तो आकाशवाणी समय के साथ
1: जी,
3: मैंने शुरू में भी कहा, अभी कह रहा हूँ, विश्वसनीय और जिम्मेदार प्रसारण संस्थान रहा है
1: जी। बिल्कुल,
3: आज की तरह से जो श्रोताओं का ध्यान
1: जी
3: आकर्षित करके होड़ पैदा किए और TRP पैदा करने की बात है, ये रेडियो में कभी नहीं रही,
1: कभी नहीं,
3: आज भी नहीं।
1: बिल्कुल सही बात है,
3: जो जिम्मेदारी है उसको निभाया। इसी क्रम में शुरू से ही आकाशवाणी ने
1: जी
3: जो लक्षित श्रोता है, टारगेट
1: जी,
3: उस वर्ग को समझा, उनकी जरूरत

0: को समझा
1: जी
0: उसी के विषय के अनुसार विषय वस्तु तैयार की गई, प्रस्तुति शैली तैयार की गई और निरंतर नवाचार होता रहा,
1: बिल्कुल
0: अपडेट होता रहा,
1: अपडेट होता रहा।
0: तो ये रेडियो की अपनी खास बात रही।
1: जी जी,
0: रेडियो के बारे में कहा जाता है इसका उद्देश्य है ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, ये वहीं तक सीमित नहीं रहा। समकालीन जो समस्या है, समाज की समस्या है, तंत्र की समस्या है, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है।
1: जी जी,
2: बिल्कुल।
0: फोन इन प्रोग्राम आया
1: जी,
0: हर आदमी की आवाज दी, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सरकार, सरकारी कार्यालय, उनके बीच में एक संयुक्त सेतु का काम रेडियो ने किया है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने उनको मंच दिया, उनको माइक दिया, उन्होंने अपनी समस्या रखी। सभी देश के हर कोने में
1: जी
0: लोगों ने समस्याओं का समाधान करके लिए अधिकारियों ने काम किया, सरकारों ने काम किया और आज तो आप खुद देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद रेडियो के साथ कितने व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं,
1: मन की बात कार्यक्रम और
0: उनकी पूरी कोशिश करती है कि मैं
1: जी
0: उस आदमी तक पहुंचूं जब कोई नहीं पहुंच रहा है।
1: एग्जैक्टली,
0: मैं उससे बात करूं।
1: इसीलिए इसके लोगों में ये वाक्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: एक्चुअल में ये जो हमारे मोनोग्राम है उसमें लिखा हुआ है
1: जी
0: बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुत बड़ी आबादी है
1: जी,
0: उसका हित साधन हम कैसे करें
1: जी, बिल्कुल,
0: और उसको सुख कैसे प्राप्त हो, सुख की अनुभूति कैसे हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये रेडियो ने किया ही नहीं, उसको आगे बढ़ाया।
1: आकाशवाणी का ये प्रथम उद्देश्य रहा। द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि बसवाल साहब ने कहा कि जन जन तक पहुंचने का प्रयास हमारे रेडियो ने, आकाशवाणी ने किया और पहुंचा भी, और पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा, पूरी सत्यता के साथ पहुंचा। तो इसमें सब तरह के कार्यक्रम थे, लाइक कृषि कार्यक्रम थे, महिलाओं से संबंधित थे, बच्चों के कार्यक्रम थे, युवाओं के लिए कार्यक्रम थे, शैक्षिक कार्यक्रम थे, घर गृहस्थी से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी,
2: एवरीथिंग वाज देयर।
1: तो जो आपका जो रेडियो लिसनिंग था, वो मुख्य रूप से आपका रुझान किन कार्यक्रमों की तरफ एज ए श्रोता रहा?
2: जब रेडियो से हमारा संपर्क हुआ
1: जी,
2: तो उस वक्त हम युवा थे
1: जी,
2: और 5 बजे जो युववाणी कार्यक्रम आया करता था उसके तो नियमित श्रोता थे।
1: अच्छा,
2: रेडियो जब मेरे पास आया, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा 65 के बाद लाइसेंसिंग खत्म हो गई, लेकिन मेरे पास 69 में रेडियो आया और उस वक्त मुझे लाइसेंस लेना पड़ा था।
1: अच्छा अच्छा,
2: और वो लाइसेंस मेरे ख्याल मैंने 1 या 2 बार रिन्यू भी कराया
1: जी, जी,
2: वो लाइसेंस की कॉपी अभी तक भी पड़ी है मेरे
1: जी, जी, जी, जी।
2: बाद में जरूरत नहीं रही। तो युवाणी सुनते थे
1: जी,
2: सुबह वेद भारती से ही शुरू होता था और रेडियो इतना लाइफ का हिस्सा हो गया था उस वक्त जब हम पढ़ते थे कि जब हम 10वीं 11वीं की परीक्षा दे रहे थे तो रात को रेडियो पर म्यूजिक चला करके छोड़ दिया और हम पढ़ रहे हैं। वो रेडियो का म्यूजिक जो है हमारे लिए एक तरीके से साउंड प्रूफ का काम करता था,
1: जी, जी।
2: दूसरी कोई, और वो अपना चलता, और कभी कभी उस चलते हुए भी कोई चीज ऐसी वहां आ जाती थी कि हम अपनी पढ़ाई रोक करके उसको सुनने लगते,
1: उसको सुनने लगते।
2: तो वो एक रेडियो से तादाद में स्थापित करने का ऐसा काल था कि मेरे वक्त में जितने भी लड़के थे जो 10th और 11th की परीक्षा दे रहे थे, लगभग सबकी यही हालत थी कि वो रेडियो चालू करके रखते, तो सारी रात रेडियो चलता।
1: जी जी, मैं आपको इस विषय में अपना भी अनुभव बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं विविध भारती के और उर्दू सर्विस के कार्यक्रम बहुत सुनती थी। घर पे बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ाई के साथ रेडियो कैसे चल रहा है, पढ़ाई के साथ रेडियो कैसे चल रहा है। मैंने एक दिन तंग आकर, क्योंकि मैं रेडियो सुनना बंद नहीं कर सकती थी, मैंने एक दिन तंग आकर अपने पापा से कहा कि मेरा रिजल्ट आने के बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट अच्छा आने के बाद मेरे फादर ने मुझे कभी रेडियो सुनते हुए पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत जो है वो आपको एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी, ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा आपको कुछ बेहतर बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सक्सेना साहब, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बसवाल साहब ने कहा था कि एसटी की बात जो है वो सक्सेना साहब ज्यादा अच्छी

बताएंगे। तो जो जो हमें मालूम है वो एक छोटी सी बात है कि आकाशवाणी की जो ST है ये वॉल्टर कॉफमैन ने तैयार की थी। ये एक यहूदी शरणार्थी थे। इतने सालों की स्वर्णिम यात्रा में ये संकेत धुन जैसे ही बजती है, अब तो कुछ अच्छा आने वाला है, अब तो कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है, इस भावना से भर जाते हैं।

0: के कुछ दो थे स्टेशंस। इसके अलावा देशी रियासतों की भी रेडियो प्रसारण सेवाएं थी कि भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसल स्टेट्स। तो मैसूर स्टेट ने सबसे पहले इस ये ज्यूइश पर्सन का नाम ले लिया, उनकी धुन को अपनाया था।
1: अच्छा,
0: और मैसूर स्टेट से इसको बाद में ऑल इंडिया रेडियो ने ग्रहण कर लिया।
1: अच्छा,
0: तो ये सब कुछ हुआ और वो अभी तक चली आ रही है। और अभी कम लोगों को मालूम है कि एक विदेशी ने इसको बनाया था। लोग उसको अभी भी ये मानते हैं बिस्मिल्लाह खान की शहनाई होगी, कि इसमें भारतीयता का समावेश बहुत ज्यादा है।
1: जी जी, बहुत जी। और कहते हैं ना कि संगीत की एक्चुअली कोई सरहद होती ही नहीं है।
0: जी।
1: संगीत इसीलिए सरहदों के पार जाता है और सबकी आत्माओं का स्पर्श करता है।
0: जी।
1: तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये मैसूर वाली बात तो सच कहूं हम लोग को पता ही नहीं थी। इसीलिए जब इतिहास की कोई बात आती है तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ रुख करती हूं। यहां एक छोटी सी बात हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि इस धुन के रचयिता वाल्टर काउफमैन थे, लेकिन महली मेहता जी ने जो एक भारतीय थे उनको सहयोग किया था इस धुन के बनाने में। अच्छा साहब, बसवाल जी की तरफ फिर एक बार रुक करते हैं।
2: जी जी,
1: स्वतंत्रता आंदोलन हमारे जितने भी हुए उसमें भी हमारी आकाशवाणी की बड़ी स्वर्णिम यात्रा रही, इतनी अहम भूमिका थी कि उसको भुलाया नहीं जा सकता, इस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे?
2: आकाशवाणी का नाम ही 1957 में आया है
1: जी,
2: तो ये तुम नहीं कह सकते कि आजादी में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही
1: जी।
2: वो उस वक्त जैसा सक्सानी ने कहा, रियासतें थी, दूसरे और
1: जी,
2: संस्थान
1: जी,
2: थे।
1: सुभाष
2: चंद्र बोस जी के बारे में बताया, उनका अपना रेडियो चलाया उन्होंने, वो अलग कहानी है। चूंकि हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष
1: जी,
2: जो प्रसारण
1: 1936 के बाद से अब तक,
2: इस रेडियो ने इस देश को
1: जी
2: संगठित करने में, इनकी समस्याओं के समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: जी जी जी,
2: जैसे कि जितने भी बॉर्डर के इलाके थे
1: जी,
2: उन सारे बॉर्डर के इलाकों को रेडियो ने एक साथ जोड़ा।
1: हाँ जी,
2: जिस चीज का विरोध था उन्होंने एक सूत्र में रेडियो ने सबको बोला और सभी लोग हिंदी प्रसारण को खूब अच्छी तरह सुनते रहे और हिंदी का जितना प्रचार प्रसार
1: जी
2: रेडियो के माध्यम से हुआ और एक हम लोग आम बोलचाल की भाषा हुआ है, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं आप हिंदी बात कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी जी जी,
2: जहाँ तक सामाजिक सरोकार की बात है
1: जी,
2: हमारे देश में आबादी तो बहुत बढ़ गई थी, खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, उसके समाधान के लिए आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
1: जी।
2: 1952 में रेडियो कार्यक्रम शुरू हुए थे कृषि के
1: जी,
2: और कृषि के कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद हमारा जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अशिक्षित था, वो पढ़ ही नहीं सकता है, उसके लिए सबसे बड़ा साधन ये था कि रेडियो में जो सुन लिया वो सच है, रेडियो पे विश्वास करते थे। हमारे जो एक्सटेंशन के वर्कर होते थे, जो फील्ड में जाते थे किसान के पास कि आप डीएपी यूज करो, यूरिया यूज करो, नई वैरायटीज को लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी अपनाओ, तो जल्दी नहीं मानते थे। लेकिन अगर रेडियो से सुना है तो उनको बिल्कुल समझ में आता था कि रेडियो में बोला है,
1: तो उनके लिए आकाशवाणी होती थी वो।
2: हाँ, इसके साथ
1: जी
2: जैसे कहते कि कड़वी दवा को मीठी शहद के साथ देने का
1: जी,
2: हमारा जो लोक संगीत था
1: जी
2: वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, उस लोक संगीत ने सबको बांधा
1: जी।
2: यही नहीं, हमारी जितनी भी लोक संस्कृतियां हैं, कला है, गायन है, वादन है, उनका संरक्षण किया
1: जी।
2: कलाकार कहाँ जाए
1: जी,
2: पहले राजा महाराजा थे तो वो बुलाते थे, दरबार लगते थे, उनको जो इनाम राजा दे, नवाब दे, पटेल दे, कोई भी दे, लेकिन अब कौन दे? आकाशवाणी ने ऐसे लाखों लाखों कलाकार परिवारों का भरण पोषण ही नहीं किया, उनका उत्थान किया
1: जी, बिल्कुल,
2: उनको सहारा दिया
1: जी,
2: उनको जगह दी
1: जी,
2: उनको प्लेटफॉर्म दिया, और जो विधाएं लुप्त होने वाली थी वो सब बच गई।
1: हाँ जी, लोक कलाकारों को आकाशवाणी ने बहुत प्रोत्साहित किया, ऐसे जो गुमनामी के अंधेरे में कलाकार थे उनको भी कई बार फुटपाथ पर किसी की गायकी अच्छी लगी उसको भी उठाकर मौका दिया, जो स्टूडियो तक चल के आया उसको भी मौका दिया।

0: किसी संदर्भ से अगर किसी कलाकार का पता चला कि ये बहुत अच्छा वायलिन वादक है या लोकवाद्य बजाता है, उसको भी आकाशवाणी ने प्रोत्साहित किया। तो आकाशवाणी ने जन जन को एक एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रस्तुत किया।
1: या एक बात और इसमें आपको जोड़ें
0: जी,
1: हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है
0: जी,
1: अगर उसके इतिहास को उठा के देखें
0: जी,
1: तो जितने भी कलाकार हैं, संगीतकार हैं
0: जी,
1: नाटककार हैं, राइटर हैं, वो सब रेडियो की देन है
0: जी।
1: राजकपूर के जो पिताजी पृथ्वीराज कपूर थे वो खुद प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: लाहौर के अंदर। आप किसी को भी उठा के देख लें, वो रेडियो के साथ जुड़ा रहा, या तो सर्विस की, रेडियो के कलाकार हैं, और वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया उन लोगों ने
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक आकाशवाणी तो ऐसी धरोहर है जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य
0: जी,
1: भारतीय परंपराएं, भारतीय रीति रिवाज
0: जी,
1: भारतीय
0: त्योहार, पूरी संस्कृति का एक समग्र रूप रखा,
1: सभी को अपने आंचल में समेटा
0: जी। बिल्कुल,
1: और उनको खुले में लोगों को बांटा।
0: और सबसे जो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल उद्धृत करने लायक जो बात थी आकाशवाणी की, कि ये सब कुछ करते हुए भी आकाशवाणी ने जो अपना मूल उद्देश्य था कि ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक मनोरंजन पहुंचना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, और लोगों तक शिक्षा का प्रसार भी मनोरंजन के माध्यम से होना चाहिए, इसको पूरा किया।
1: एक बात और मैं रेडियो के बारे में मैं बताना चाहूंगा सक्सेना जी, और आप मेरे से सहमत हो
0: जी।
1: दुनिया की किसी भी कंट्री में
0: जी
1: इतनी भाषाओं में और बोलियों
0: प्रसारण नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम लगभग 30 भाषाओं में अपना प्रसारण करते हैं
0: जी। हाँ,
1: जो हमारे सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यताएं प्राप्त हमारी लैंग्वेज है वो तो है ही है, इसके अलावा जो हमारे मित्र देश है उनका भी प्रसार करते
0: जी, जी, जी।
1: वो भी छोड़िए
0: जी,
1: हमारा जो डायलेक्ट है, बोलियां हैं,
0: हाँ,
1: उसमें करते हैं,
0: उसमें भी करते हैं।
1: आप कांगड़ी में हम करते हैं
0: जी,
1: हम क्या नाम है दूसरे आपके हड़प्पी में हम करते हैं
0: जी जी जी,
1: है ना। जब जहां की जो बोली है
0: जी,
1: जिससे बल्कि कई ऐसी जगह हैं जिसमें अंडमान निकोबार में बहुत कम आबादी रहती है, 1 लाख के करीब आबादी, उनके पास अपना एक डायलेक्ट है, उसके लिए भी रेडियो है।
2: वो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर बोलियों में हम बात नहीं करेंगे
1: हाँ,
2: तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सकते
0: जी। बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषाओं को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है।
2: कुछ लोग तो वो बोली के अलावा कुछ जानते ही नहीं, वो कोई भाषा नहीं जानते, वो केवल बोली जानते हैं
0: जी।
2: तो जब तक हम उस बोली में बात नहीं करेंगे, रेडियो उस बोली में नहीं जाएगा, उन तक पहुंच ही नहीं सकता।
0: इसीलिए जब क्षेत्रीय रेडियो बना, मतलब क्षेत्रीय स्टेशन बने और वो आकाशवाणी का हिस्सा बने, AIR का हिस्सा बने, तो 1950 आते आते, मतलब 36 से 50 कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं था, 1950 आते आते हमने 11 भाषाओं में सप्ताह के 116 घंटे के प्रसारण का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया था। और इस लक्ष्य के साथ जब हम आगे बढ़े तो आज की तारीख में तो पूछिए मत कि आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे।
1: जो समाज का वर्ग है
0: जी,
1: बच्चे हैं, युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं
0: जी,
1: महिला हैं, वृद्ध हैं, जो सच्चा जी के परिवार के लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ा।
0: बिल्कुल,
1: सबके लिए प्रोग्राम दिया,
0: सबके लिए प्रोग्राम,
1: और सबने उसको स्वीकारा
0: जी।
1: और उसमें भी जो भी नई से नई साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, उसको भी लिया। और साहित्य के क्षेत्र में तो
2: खूब काम किया,
1: बड़ा काम हुआ है, संगीत के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है,
0: शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, साहित्य, इसको तो इसका एक्चुअली एक अलग स्वर्णिम युग आकाशवाणी ने बनाया, आकाशवाणी के साथ इसका भी एक स्वर्णिम युग चला
1: जी।
0: सक्सेना साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ दोबारा
1: जी।
0: निश्चित रूप से 1936 से जब हम 90 वर्षों की यात्रा की बात करते हैं, तो 1936 से हम आज तक के सफर की बात करते हैं 2026 तक की। लेकिन जैसे कि बसवाल साहब ने सुभाष चंद्र जी बोस

0: का जिक्र किया कि उन्होंने आजाद हिंद रेडियो के नाम से अपने संदेश जनता के नाम प्रसारित किए थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक बात हम कुछ समय पहले कर रहे थे कि वेदर इसमें ये स्वर्णिम युग आने के पहले की बात है और 1939 से 1945 तक का काल माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का, तो एक बड़ी रोचक जानकारी पहुंची थी हम तक। तो मैं आपसे, क्योंकि फिर से मैं कहूंगी कि इतिहास के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, कि पता चला कि ये उद्घोषणा उषा मेहता जी ने सबसे पहले की थी कि ये कांग्रेस रेडियो है जो भारत में ही कहीं से बोल रहा है 42.34 मीटर्स पर, और इसने एक अलग जगाई थी लोगों में जागरूकता की कि हमें ब्रिटिशर्स से जो है वो छुटकारा चाहिए, हम अपना देश अपने उसमें स्वाधीनता हम लेना चाहते हैं। तो इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि ऑल्दो हम ये थोड़ा 90 वर्ष से पीछे ही जाकर बात कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये लिंक तो है ही है।
1: ये मैडम उस 90 वर्ष के कालखंड में ही आता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि 1939 का है
0: जी
1: और हम 1936 से अपना पीरियड शुरू कर चुके हैं।
0: से बिल्कुल।
1: उषा मेहता ने जो किया था इसके पीछे जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
0: वाह, क्या बात।
1: और महात्मा गांधी इसकी पृष्ठभूमि में हमेशा रहे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जैसे ये फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक ने लिखा
0: जी, जी, जी।
1: कि 300 हिस्सों पर राज्य करने वाला ब्रिटिश एम्पायर एक दुबले पतले इंसान से डरता था जो मिट्टी की झोपड़ियों में रहता था, महात्मा गांधी। तो सारा उन्हीं की पृष्ठभूमि से था। और हंसा मेहता को बाद में गोली सीधी मारी गई, हर मंच पर चढ़ जाती थी, रिकॉर्ड करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा की गई
0: जी 42 में, 1942
1: जी, हाँ
0: जी।
1: और तो ये 8 अगस्त की मिडनाइट को हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग से इन्होंने अपना शुरू कर दिया। और ये लोग अपने स्थान बदलते रहे। इसके लिए हाई पावर्ड ट्रांसमीटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लाए थे
0: जी।
1: तो उसकी स्क्रिप्ट लिखने में सरोजनी नायडू और इन लोगों का योगदान रहा। ये सब बहुत दिग्गज स्कॉलर थे
0: जी, जी।
1: और उस वक्त क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो बाकी लेखकों से ये लोग स्क्रिप्ट ले लिया करते थे और ये उसका प्रसारण करते थे। प्रसारण बॉम्बे से ही प्रारंभ किया गया
0: जी, जी, जी।
1: और इसमें आजाद हिंद फौज का जो रेडियो था उससे भी ये लोग, उसकी जो राम सिंह ठाकुरी की बनाई हुई धुन थी जो आजाद हिंद फौज का था, कदम कदम बढ़ाया जा खुशी गीत गाया जा, तो उसको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया
0: जी, जी।
1: और उसके वजह से ये था कि बंगाल के लोग बताते हैं कि वो तो निश्चिंत बैठे थे किसी एक दिन नेताजी की फौज वहां चली आएगी। और उस प्रसारण को, उस ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करके
0: जी।
1: और लोग इधर उधर सुनाते थे
0: जी, जी।
1: और तो आपको पता है पुराने लोगों की मेमोरी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। जैसे अनंत स्वयं आयंगर थे गांधी के साथ थे, वो कोई लेटर एक बार पढ़ लेते थे अंग्रेजों का, उसको विद पंक्चुएशन मार्क्स पूरा दोबारा लिख के गांधी को दे दिया करते थे। तो ये लोग उस चीज की ड्राफ्टिंग इधर से उधर भेजा करते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में तो इसका योगदान बहुत ज्यादा रहा। जैसे आपने एक बात कही उससे जुड़ी बात बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने बाद में सरेंडर करना शुरू कर दिया था और जब क्रिस्प मिशन आया लॉर्ड वेवल ने जाकर बताया कि ये लोग तो आजादी बिना मानेंगे नहीं, और अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उसकी सारी गतिविधियां रेडियो पर देना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। यानी वो जो उषा मेहता का रेडियो था उसके प्रभाव से उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर उसका ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया था। और वो दिन जो था महत्वपूर्ण 14 अगस्त 1947
0: जी,
1: जब पंडित नेहरू का जो विश्वविख्यात सेंटेंस है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसकी घोषणा पूरी रेडियो पर प्रसारित की गई उसको। और तो उससे क्या हुआ कि भारत में पिछले कई वर्षों से एक उत्तेजना व्याप्त थी कि आजादी अब मिलकर रहेगी। चाहे चर्चिल कहते थे वी फॉर विक्ट्री, लेकिन भारतवासी आश्वस्त होने लगे थे इन प्रसारणों से कि आजादी अब मिलकर रहेगी
0: जी। 15 अगस्त 1947 का आपने जिक्र किया जब हमें स्वाधीनता मिली थी, नेहरू जी के भाषण का आपने जिक्र किया जो आधी रात को प्रसारित किया गया था
1: जी।
0: यहाँ याद आती है मुझे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की आवाज में जो वंदे मातरम था वो पहली बार इसी दिन की सुबह गाया गया था
1: जी।
0: और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े मन से, और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की आवाज में जब ये वंदे मातरम गाया गया तो बाहर

0: भारत का जो जनमानस था वो ना केवल आह्लादित हो गया बल्कि एकदम उत्सुक हो गया कि ये जो आकाशवाणी है ये अब हमारी अपनी है, इसमें जितने संवाद होंगे वो हमारे लिए होंगे। भारत की विकास यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस से। आप बहुत अच्छे श्रोता भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं। आपने कहा कि हम ऐसे रेडियो सुनते थे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, कहीं भी बैठ के। ये बताइए कि जब आपके घर में रेडियो पहली बार आया तब क्या आलम था?
1: तब तक हम बहुत सारे बच्चे थे घर में, तीन चार पांच तो हम भाई बहन थे
0: जी, जी,
1: और घर में ये वैल्यू थी कि अगर रेडियो आ गया तो ये पढ़ेंगे नहीं, सब रेडियो पर लग जाएंगे। तो रेडियो लाया ही नहीं गया, बल्कि मुझे अपनी पॉकेट मनी से वो रेडियो सेकंड हैंड ट्रांजिस्टर खरीद के लाना पड़ा। और जब ट्रांजिस्टर आ गया और घर के लोगों ने देखा कि ये ट्रांजिस्टर कहीं पढ़ाई लिखाई में किसी का कोई व्यवधान नहीं कर रहा है, बल्कि वो इनकी रुचियों को और बेटर बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, तो फिर उसकी स्वीकृति हो गई घर में। और ये जरूर था कि मैं रेडियो सुनता था तो छोटे भाई बहन मुझसे थोड़ा सा डरते भी थे, वो जमाना ऐसा ही था। तो जब तक मैं कुछ कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, जैसे ही मैंने रेडियो छोड़ा तो वो पूछते और रेडियो उठा करके ले जाते ट्रांजिस्टर, और अपना कोई जो भी सुनना होता सुनने लगते।
0: क्योंकि जैसा कि बसवाल साहब ने बताया कि रेडियो में आकाशवाणी ने हर वर्ग के लिए, बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक के लिए कार्यक्रम रखे हुए थे, सबके इंटरेस्ट का अलग अलग टाइमलाइन में कुछ ना कुछ मिल ही जाता था।
1: मेरे साथ तो ऐसा भी था कि मैं जैसे स्त्रियों का कोई प्रोग्राम आ रहा है
0: जी, जी, जी।
1: तो मैं उसको लगा के और हमारी अम्मा को कहता भी ये आप सुनो,
0: अच्छा आप सुनो
1: ये आपके लिए है। और जैसे धार्मिक लोग थे
0: जी, जी।
1: तो कोई धार्मिक चीज आ रही है तो उनको भाई अब आप इसमें सुन लीजिए।
0: अब आप सुन,
1: आपको आश्चर्य होगा कि मैं कोटा में आने के बाद सन 2000 के पहले या उसके आसपास रेडियो पर, इस पे आकाशवाणी पर सुबह रामायण का प्रसारण होता है, वो आज भी होता है, रामचरित मानस का
0: जी बिल्कुल
2: अभी होता।
1: तो मैंने पूरी रामचरित मानस वो उस मेरे जो यहाँ नया ट्रांजिस्टर था उसमें रिकॉर्डिंग भी थी,
0: अच्छा
1: तो डायरेक्टली वो रिकॉर्ड कर सकता था। तो पूरी रामचरित मानस मेरे यहाँ रिकॉर्ड हुई और वो रिकॉर्डिंग जब तक ये दूसरे साधन नहीं आ गए तब तक वो सुरक्षित रही।
0: अच्छा।
1: हम उसका उपयोग भी करते रहे
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: और बाद में तो वो कैसेट्स हुआ करती थी, जब ज्यादा दिन काम में नहीं ली तो चिपक के खराब।
0: बिल्कुल। और इस तरह का जो संकलन होता है, जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता था, आपके जो उलझन वाले कुछ क्षण, जिंदगी तो उतार चढ़ावों में ही चलती है, तो आकाशवाणी का ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहा कि जब आप किसी वजह से हैरान परेशान है, मन उद्वेलित है, आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, तो जब आप अपनी पसंद की रिकॉर्डिंग वापस से सुनते थे तो आपको बहुत सुकून मिलता था, बहुत आराम मिलता था। तो ये भी एक मानसिक शांति का भी स्रोत हमारी आकाशवाणी बनी। बाद में तो खैर दूरदर्शन भी आ गया था, लेकिन रेडियो का अस्तित्व तब से लेकर आज तक, चाहे वो डिजिटल रेडियो के रूप में FM आ गया, मोबाइल रेडियो आ गया, इंटरनेट रेडियो आ गया, पॉडकास्ट आ गया, डिजिटल मीडिया आ गए, तब भी वो जो श्रवण की महत्ता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे खेत में हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे महिलाएं घर गृहस्थी का काम कर रही हैं, या कि युवा अपने किसी स्टडीज में बिजी है, या सबके लिए वो आवाज जो है वो भावनात्मक जुड़ाव का एक माध्यम बन जाती थी।
1: सबसे बड़ी बात तो कि आपका, आप हाथों से काम कर रहे हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: थोड़ा बहुत दिमाग भी अप्लाई कर
0: जी,
1: रहे हैं, या आप बॉडी आपकी काम कर रही है। जब रेडियो चल रहा होता था तो आपका दिमाग वहां रहता था, तो आपकी जो दूसरी उलझने थी वो उस काम को करने में व्यवधान नहीं पैदा करती थी। तो वो जो भी काम कर रहे हैं आप रेडियो सुनते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
0: हाँ, ज्यादा बेहतर ये कर सकते हैं।
1: और रेडियो आपको दिमाग को ट्यून भी करता है
0: जी, बिल्कुल।
1: खासतौर से आकाशवाणी का जो ये विविध भारती वाला सेक्शन शुरू हुआ, इसने बहुत काम किया,
0: बहुत
1: इसमें बहुत तो विविधता है
0: जी।
1: मेरे कार में रेडियो लगा हुआ है
0: जी,
1: और उसमें आकाशवाणी परमानेंटली ट्यून्ड है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है वो भारती शुरू हो जाता है,
0: जाता है बिल्कुल।
1: और उसमें समाचार भी सुनते हैं, उसमें प्रोग्राम भी आते हैं, और लगभग सभी प्रोग्राम उसमें सुनने को मिल जाते हैं।
0: और अमीन सयानी जी वो पहले प्रस्तुतकर्ता या उद्घोषक थे जिन्होंने एक नई

0: शैली को आवाज दी थी आवाज की दुनिया में, श्रोताओं से जुड़ के बात करते थे, तो वो एक बहुत ही मजेदार दौर था, बहुत ही सुनहरा दौर था इस स्वर्णिम यात्रा का। और उसके बाद तो ये शैली लगभग सभी उद्घोषकों ने अपना ली थी अपने अपने अंदाज में कि जुड़ के बात करो तभी ये जनमानस की आवाज बनेगा, तभी ये भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम बनेगा, तभी ये सांस्कृतिक चेतना का स्रोत बनेगा। और आकाशवाणी ने ये कर दिखाया। हम सब आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ये कहते हुए इस स्वर्णिम यात्रा में कि आकाशवाणी की ये स्वर्णिम यात्रा आने वाले समय में भी स्वर्णिम अक्षरों में ही लिखी जाएगी, बहुत गर्व का अनुभव होता है। बसवाल साहब, आपका तो बहुत बहुत अनुभव है रेडियो के क्षेत्र में, आपने कितने ही पुरस्कार जीते, आपने कितने ही कीर्तिमान स्थापित किए। अभी आपको, आपके विचार में क्या आपको लगा कि जब दूरदर्शन आया तो उसने कहीं रेडियो को कोई हानि पहुंचाई, ऐसा लगा आपको?
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और ऐसा कभी नहीं होगा।
0: जी,
1: शुरू से इस बात की रहा है कि अगर अखबार आ गया तो किताबें नहीं पढ़ेंगे, रेडियो आ गया तो टीवी आ गया तो रेडियो नहीं सुनेंगे। नहीं
0: जी,
1: हर चीज की अपनी उपयोगिता है, हर चीज का अपना महत्व है
0: जी,
1: और वो हमेशा रहेगा। कोई किसी पर ना हावी हुआ है, न कोई किसी को रोक सका है
0: जी,
1: न बढ़ने से रोक पाए।
2: मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूं। दूरदर्शन आने से रेडियो का समय, कुछ समय दूरदर्शन की तरफ गया, टीवी की तरफ गया, वो आज भी है। लेकिन उस दौर में जब सारे लोग रेडियो छोड़ करके टीवी की तरफ जा रहे थे, रेडियो के प्रोग्रामों ने, खास तौर से आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने ऐसा उनको बांध करके रखा कि लोग टीवी से लौट करके वहां आए। आज भी रेडियो के, आकाशवाणी के श्रोता सुरक्षित हैं, वो आकाशवाणी सुनते हैं।
3: यहाँ मैं थोड़ा सा अपना
0: जी जी सक्सेना साहब बोलिए।
3: भारत सरकार ने पहले राष्ट्रकवि का पद निर्धारित किया था, मैत्रीशरण गुप्त जी थे, डॉक्टर दिनकर थे, वीर असाफदार, विश्वनाथ देवी देव ने राजकर, कोई भी नहीं है। ये लोग गवर्नमेंट के हिंदी एडवाइजर थे और लिंग्विस्टिक एडवाइजर भी थे, तो इन्होंने भाषा के माध्यम से रेडियो को एक ऐसे शिष्ट संस्कृति संपन्न भाषा दी कि कोड ऑफ कंडक्ट आकाशवाणी का कभी नहीं टूटा। आज जो मैं याद करता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट कभी टूटता ही नहीं, वो वाक्य उच्चारण में जो कुछ सेकंड का अंतर देना चाहिए, जो इफेक्टिविटी नजर आए, वो सब कुछ आज तक वही चला रहा है जो मैं मेरे बचपन की याद करता हूँ। उद्घोषकों की आवाज की जो क्लैरिटी है, प्रोनंसिएशन की स्पष्टता, वो रेडियो में अभी भी टीवी से फार बेटर है,
0: कायम है बिल्कुल।
3: और भाषाई जो है उत्कृष्टता, वो रेडियो से मैं अब तक बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। आकाशवाणी के उद्घोषक जैसे हिंदी में जयपुर के रितिका गुप्ता
0: जी,
3: इंग्लिश में और रेडियो के अनुजा कुमार, या पुराने नाम जो वकील साहब बता रहे थे, वो सारे नाम तो है,
0: नंदन पांडे थे
3: जी,
0: इंग्लिश में न्यूज रीडर मेलविन डेमेलो सिंह बहुत प्रसिद्ध हुई थी,
3: मेलविन डेमेलो थे
0: जी,
3: पैमला सिंह, मेलो डेमेलो ने 7 घंटे गांधी के एसोसिएशन का दिया
0: जी,
3: पैमला सिंह थी, साइदा बानो थी उर्दू की
0: जी,
3: अशोक वाजपेयी, इंदु भाई, विनोद कश्यप, जिनको उच्चारण में जो था कि अभी हम उन वाक्यों को वैसे ही दोहरा सकते हैं जो हमने 60 साल पहले सुने
0: जैसे सुने थे।
2: हम एक चीज छोड़ रहे हैं
0: जी,
2: रेडियो ने खेलों की तरफ भी आकर्षित किया, जो रेडियो पर कमेंट्री शुरू हुई, खास तौर से शुरू
3: जसदेव सिंह
2: और बाद में क्रिकेट की, उसने उसने देश भर के बहुत सारे श्रेताओं को जो है रेडियो के साथ जोड़ा। राजस्थान के हमारे जसदेव सिंह,
3: जसदेव सिंह
2: कमेंट्री के,
3: हिंदी कमेंट्री के
2: सुपर हीरो थे वो
3: जी,
2: जसदेव सिंह। और यहाँ तक कि केवल वो हॉकी की कमेंट्री नहीं की उन्होंने, उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्रामों की भी
1: लाइव ब्रॉडकास्ट किया,
2: लाइव ब्रॉडकास्ट
3: क्रिकेट की भी की है, क्रिकेट की भी,
2: बल्कि उन्होंने एक कोड स्थापित किया कि कमेंट्री कैसे करनी चाहिए, हिंदी की कमेंट्री कैसी होनी चाहिए
0: जी,
2: ये बहुत मजबूत बात थी।
0: बिल्कुल,
2: और उनको हम छोड़ ही रहे थे
0: जी जी। एक और बात महत्वपूर्ण थी कि 1975 से, वो भी हमारे स्वर्णिम काल के बीच ही था वो पीरियड, 1975 से 77 तक आपातकाल घोषित किया गया था, और उस पीरियड में आकाशवाणी ने ये महसूस किया कि हमें आधीनता नहीं चाहिए, हमें किसी भी उसके समय बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो स्वायत्त के लिए एक लड़ाई लड़ी गई। पहले वर्गीज कमेटी भी आई थी, उसके पहले चंदा कमेटी भी आई थी, लेकिन अचीवमेंट ये रही कि फाइनली आकाशवाणी ने यह हासिल कर लिया कि वो 1997 में प्रसार

0: भारती के रूप में स्थापित हो गया। समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है। बसवाल साहब आप कुछ फरमा रहे थे, आप कुछ कह रहे थे।
1: नहीं, मैंने सिर्फ ये बोलना था कि मुझे शिमला में
0: जी
1: और दिल्ली में दो जगह बड़े लंबे समय पर काम करने का मौका लगा।
0: जी जी,
1: ये दोनों केंद्र एक ऐसे रहे, टूरिस्ट शिमला बहुत आता है और वहाँ पर गर्मियों में हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं
0: जी।
1: तो हमारी ड्यूटी होती थी कि हम उन लोगों को बा सम्मान स्टूडियो में बुला के लाएं, उनकी इज्जत करें, उनकी खुशामद करें, उनकी जो जो उनके पास ज्ञान है या उनके पास जो साधना है या उनके पास जो संगीत है वो हम करोड़ों करोड़ों लोगों तक तो पहुंचाएं। तो हम वहाँ ये हंटिंग का काम भी करते थे
0: जी, जी।
1: दिल्ली में तो ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता और कोई ना कोई हिंदुस्तान के कोने का कोई ना कोई आदमी रोज चला होता है। तो हमारी ड्यूटी है सुबह मीटिंग में कि भाई कल कल्चर प्रोग्राम वहाँ होना है, उसमें ये लोग आ रहे हैं, उनकी पार्टी को लाना है।
0: हाँ।
1: चाहे उनकी संगीत की रिकॉर्डिंग है
0: जी, जी।
1: ड्रामा की रिकॉर्डिंग है, किसी कोई अच्छा राइटर है उसकी कहानी है, कोई अच्छा कवि है, कुछ न कुछ होता ही रहता है।
0: हाँ, रेडियो पहुंचता था लोगों तक।
1: इस तरह से शायद मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि कोई दो के नाम गिनाए, दस के गिनाए, बीस के गिनाए, पचास के गिनाए, मैं तो नाम ही नहीं गिना सकता हूँ, इतने लोगों के नज़दीक मुझे जाने का मौका लगा।
0: जी जी जी, तो बातें तो करने के लिए बहुत हैं और आप इतने प्रबुद्ध जन जिनको इतना डीप नॉलेज है इस विषय पर, सब साथ में हैं, लेकिन समय के तकाजों के साथ चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें इस परिचर्चा को अब कंक्लूड करना होगा। तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी अनमोल जानकारी इस स्वर्णिम यात्रा की हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे प्रबुद्ध जन आज स्टूडियो में थे हमारे साथ। और मैं ये कहूँगी अंत में कि वैज्ञानिक जो गुगली एल्मो मार्कोनी ने जो एक जिन्हें वायरलेस संचार का जनक माना जाता है, वहाँ से जो आविष्कार शुरू हुआ और 2026 तक की यात्रा, मतलब ये मैंने 90 में और पिछले साल भी जोड़ दिए जहाँ से कि आविष्कार हुआ था, तो ये जो यात्रा थी ये बड़ी ही सुखद, बहुत ही सुकून देने वाली, आत्मीयता से भरी हुई, संस्कृति से भरी हुई यात्रा थी। और रेडियो ने अपनी इस गरिमा को आज भी कायम रखा हुआ है। तो हम अपने श्रोताओं को अंत में चलते चलते ये बता दें कि आज की स्थिति ये है कि छोटे बड़े सभी स्टेशन मिलाकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के लगभग 591 से 593 स्टेशन और चैनल चलते हैं। निजी एफएम के लगभग 388 से 391 स्टेशन चलते हैं और कम्युनिटी रेडियो के 531 से 564 स्टेशन चलते हैं, जो हमें वर्तमान आंकड़े जो लेटेस्ट लिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये एक बहुत ही सुखद यात्रा रही और आज इस परिचर्चा में आप सबके साथ ये यात्रा और भी अनमोल बन गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार
2: आपको। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की 90 सालों की उपलब्धियों पर एक परिचर्चा। विषय था भारत में रेडियो प्रसारण की स्वर्णिम यात्रा। परिचर्चा में भाग ले रहे थे आकाशवाणी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रसारण अधिकारी श्री डी बंसवाल, इतिहासकार डॉ अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ रेडियो श्रोता और लेखक श्री दिनेश राय द्विवेदी। परिचर्चा का संचालन कर रही थी श्रीमती पुखराज भाटिया। परिचर्चा में निर्देशन था टीआर मीणा का, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रामनारायण मीणा।
4: लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-232-2442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी, जनवाणी, लाभवाणी। चंबल चैनल पर आप सुनते हैं अपना

0: पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए वक्त वही मगर दिन बदल गया। अब शुक्रवार की जगह एक दिन पहले गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक आप करवा सकेंगे इस प्रोग्राम के लिए अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग और सुन सकेंगे अपने पसंद के गीत उसी समय यानी शनिवार रात 9 बजे से 10 बजे तक। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के लिए फोन नंबर भी वही है 29411142 STD कोड 0744। याद रखिएगा टेलीफोन नंबर 2941142 STD कोड 0744। और दिन जरूर याद रखिएगा गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक हमें रहेगा आपका इंतजार।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही होगी।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई हैं,

0: होगा।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-232-2442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी, जनवाणी, लाभवाणी।
3: FM 102 और साथ ही 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।

0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोतों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोतों, फिल्म संगीत के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। श्रोताओं, पहला गीत FM 102 पर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, मधुर आवाज उदित नारायण की। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, संगीत वो जादू है जो शब्दों को भाव देता है, धड़कनों को सुर देता है और यादों को नई उड़ान देता है। भारतीय सिनेमा की पहचान केवल उसकी कहानियों से नहीं बल्कि उसके मधुर गीतों से भी होती है। कभी अलका याग्निक, कभी उदित नारायण, इन सभी की आवाज वाकई में दिल को छू जाती है। उनके भाव विभोर उस मन को पूरी मस्ती से भर देती है, चेहरे पर अलग ही मुस्कान लेकर के आती है। तो कभी लता मंगेशकर जी के वो गीत जीवन में नया रंग भर देते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसे गीत को जिसने लाखों दिलों को अपनी मधुरता से जीता है, उदित नारायण, अलका याग्निक की मधुर आवाज में।

दोस्तों, भारतीय फिल्मी संगीत का इतिहास लगभग एक सदी पुराना है। हर दशक ने हमें ऐसे गीत दिए जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। खुशी हो, गम हो, उत्सव हो या अकेलापन, हर भावना के लिए फिल्म संगीत में अलग अलग तरीके के गीत मिलते हैं। और कहते हैं कि जहाँ पर शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ संगीत बोलने लगता है। तो चलिए इसी फीलिंग के साथ, इसी भावना के साथ सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये सफर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। भारतीय सिनेमा की आत्मा अगर कोई है तो वो है उसका संगीत। फिल्में आती हैं, चली जाती है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं। कभी ये गीत प्यार का संदेश देते हैं तो कभी दोस्ती का, कभी देशभक्ति का देते हैं तो कभी इश्क प्यार और मोहब्बत का। फिल्म संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी भावना और हमारे समाज का एक आईना भी है। और शायद यही कारण है कि दशकों पुराने गीत भी आज उतने ही लोकप्रिय होते हैं जितने अपने समय में थे। सुनते हैं अगला गीत, फिल्म रंग, मधुर आवाजें, अलका याग्निक, कुमार सानू।

दोस्तों, समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, लेकिन अच्छे संगीत की पहचान कभी नहीं बदलती। और शायद यही वजह है कि पुराने और नए गीतों का ये खूबसूरत संगम आज भी श्रोताओं के दिलों पर राज करता है। और हमें उम्मीद भी है कि इन गीतों ने आपके दिलों में ज़रूर अपनी जगह बनाई होगी। श्रोताओं, फिल्म संगीत के सफ़र को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। तो दीजिए इजाज़त इसी वादे के साथ कि रात्रि 8 बजे हम फिर से मिलेंगे चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और अंत में आप सुनेंगे राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी हाँ? आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
3: क्या?
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
10: आज ही सर्च करूंगा।
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।

0: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
1: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर

0: हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। एनआईसीडीसी द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को पीसीडी, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, एमपीटी रिचार्ज शाफ्ट तथा सीसीटी कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासी

0: व्यक्तियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थी। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की।

0: इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहले आज री खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सू चौखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करयो आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करया उर्वरकां रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारां ने सलाह देवण खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स बीच वेली खिताबी भिड़ंत समाचारा रे साथे मैं संगीता शर्मा अबे समाचार विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सू अपील करी है कि वे ऐड़े लोगां रे प्रयासां ने पहचाने और वारी सराहना करे जका कुछ नुओ करर सबने प्रेरणा देवे है आज आकाशवाणी सू प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगां सू खुद भी किनी चोखा काम सू जुड़ने री अरज करी
1: साथियों भारत के हर गांव में हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए उनकी सराहना कीजिए उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम री 134वीं कड़ी माए प्रधानमंत्री लोगां सू गर्मी रा मौसम माए सावचेती बरतने और न्यारा न्यारा सरकारी महकमा कानी सू जारी गाइडलाइन री पालना करने रो कयो देसी पेय पदार्थां रो जिक्र करता थका श्री मोदी आने अपनाने री अपील करी।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री हाल ही री आपरी नीदरलैंड यात्रा रे चालता वठेरी सरकार कानीसू चोल काल री प्राचीनतम पट्टिकावां ने भारत ने सौंपने माथे इन्हें घणो गर्व रो बखत बतायो वणा खगोल विज्ञान रे खेतर माए युवावां ने उच्छास रो जिक्र करता थका देश रे युवा साथियां सू इन विद्या माए पारंगत होने री अरज करी गर्मियां री छुट्टियां माए एस्ट्रोनॉमी सू जुड़िया विषय माथे क्लब बनार नुओ सीखने रो सुझाव दियो। इन सू पहलिया प्रधानमंत्री आपरा विचार साझा करता थका देसरा न्यारा न्यारा आंचला माए हुवेरिया नवाचारा राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियां और गांव कस्बारी बातां रे साथ है गंगा डॉल्फिन ने बचावा खातिर प्रेरणादायी कामारो उल्लेख करयो वणा रांची माए संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स होड़ारा रिकॉर्ड धारी विजेतावां ने बधाई देवता थका इन्हें देशरा खेल भविष्य खातिर उपलब्धि बतायो राज्य भर माए प्रधानमंत्री रे मन की बात कार्यक्रम ने सुनन ने लेर खासो उछास निजर आयो प्रदेश भाजपा री कानीसू कार्यक्रम रे सजीव प्रसारण री व्यवस्था करी जी पार्टी मुख्यालय माथे राखी जा कार्यक्रम माए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी भिड़ाव्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आप रे निवास माथे युवावा रे साथे इन कार्यक्रम ने सुनियो इन मौके माते मुख्यमंत्री कहो कि राष्ट्र निर्माण माए युवावारी भूमिका खास है इन सारू वे सामाजिक सरोकार रे कामासू जुड़े और नवाचार अपनार आप रे कौशल माए बढ़ोतरी करे वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार युवावा ने सकारात्मक बदलाव और विकसित भारत रे निर्माण खातिर प्रेरित करे है।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं।

0: मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सु करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजना वारो लाभ सीधे गांवा ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्या रा मुख्यमंत्रियां सु इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सु भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। माने कृषि विज्ञान केंद्रा ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ है वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथ है इन अभियान ने आगे बढ़ावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 वर्ष री लीज माथे करो जावेला। वठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 वर्ष ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इन रो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कयो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक एडी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लखस जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय माथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो। चूरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगां बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करयो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे राहगीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आमजन ने शपथ दिलाई। करोली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आमजन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
2: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान जल शपथ वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग MPT रिचार्ज साफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आमजन सु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखस सु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानी सु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन वर्ष रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अब मौसम, प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाडला दो दिना सु बनेड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ है बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथे ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठिने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट

0: तायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभागरा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ है धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीचे खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे सु शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए आरसीबी 2 माए और गुजरात टाइटन्स 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले माए नौ नौ जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन माए चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बनोड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सु चोखे काम सु जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सु देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत। इंद्रे साथे ही प्रादेशिक समाचारां रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?

0: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये
7: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम चौपाल का। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

पीपल की छांव आपना को प्यार और कोटा बूंदी का चंबल भर आ गया अपनी चौपाल। संधाई कातकार भाई बताएंगे हंसा भाई गणगणी राम राम किसान मनायो। आज की चौपाल में सबको स्वागत है और आप देख रहे हैं देखो गर्मी तो अपना तेवर दिखाई रही है पर साथ के साथ आपने जो इंदर आया है ना वो भी मेहरबानी कर रहा है तो आप यहाँ चीज़ों को ध्यान रखा टेम टेम पर अपना खेत पर फेरो फरा और यहाँ गर्मी का दिनों में अपन अपना बुजुर्गों को अपना टावरों को अपना अनबुले जानवरों को ध्यान रखा टेम टेम पर पानी।

0: लामा और देखो खचनक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपन खान का जा रहे जा तो आपने जेब में कांदू लेर चला खचनक जकड़ न लगेगी न तो अगर जकड़ लागी तो आपन आपने काम धंधा तो प्रभावित होगा ऐसे ही पर आपने जेब भी डील हो जाओगी। क्यों? क्योंकि आपने तो देखो कई बार डॉक्टर के पास जानी पड़ोगे दिखानी पड़ोगे दवाएं खानी पड़ेगी गोलियां खानी पड़ेगी तो इसलिए आपन इस जकड़ से बचा और साथ के साथ आपना जो खेती बड़े काम चे वो भी करा। अब आज के समय में देखो अपनी धरती अपनी खेती अपना खेत खाली पड़ा चे तो आपन ये टाइम पर एक काम कर सका चा कि अपनी जो मिट्टी चे उसकी जांच करा सका चा मृदा की जांच करा सका चा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना सका चा। समय में वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनावा के लिए एक योजना चे या भारत सरकार की एक प्रमुख योजना छे जो किसाना के वहाँ की कृषि भूमि की सेहत और मिट्टी के मौजूद पोषक तत्वों की सटीक जानकारी प्रदान करे छे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर दो साल में जारी करो जाओ किसान में हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनावा का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की जांच के आधार पर जो आप उर्वरक डाला चाह खाद डाला चाह उनको सही उपयोग कर खेती की लागत में कम करबो और पैदावार ज्यादा बढ़ावो छे। किसान मामायो ई कार्ड में मिट्टी का जो प्रमुख मानक जांच है जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जिंक और आयरन आदि जो तत्व रचे बाकी जानकारी रच। किसान मामायो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाबा का नरसारा लाभ छे जैसे जरूरत के अनुसार उर्वरक यानी यूरिया डीएपी आदि डालवा में जो पीसा की बचत हो मिट्टी की उर्वरता कतें लंबे समय तक बनाए रखबा कारण मदद मिले चे। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाई अपना नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कृषि विभाग या ग्राम स्तरीय कृषि अधिकारी जो छे वहां से संपर्क करके बना जा सके छे। इका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना हो इस खेत की मिट्टी को नमूनों ले जाओ चे और उकताई एक प्रयोगशाला छे जिसको आप लेब खाचा उमें जांच के दे जाओ छे और जांच के बाद में जो भी आपनी मिट्टी में आपनी जमीन में कमी रह छे वह सारी उमें आ जाओ छे और कार्ड बन रहे फिर अपने पास आ जाओ छे। खबा को मतलब है समझो को जिसा आपन अपना बच्चे बच्चा के टीको लगाओ चा वहां को टेम टेम पर टीका लगे बाद कार्ड बने छे वो कार्ड में सब अंकित रह छे कछो टीको खुदे लाओगो यो टीको खुदे लाओगो ऐसे ही आपने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड छे उमा हर चीज उमा लिखी रहे छे कि आपकी धरती में ही मिट्टी में काई की जरूरत छे रखाई कोई ना आपन जी चीज जरूरत डाल अच्छा वही डाला अनावश्यक आपन कोई भी उनके अंदर न डाला जिसो आपनो आपनो लाभ छे और आपनी बचत भी होगी और आपनी जो पैदावार छे बढ़ेगी। देखो चौपाल में भगत छे और आप जानो छो कि आपने चौपाल तो खजानो छे भंडार छे जानकारियां को तो आपन जब अवार आपने खेती बाड़ी करेंगा फसला लेऊंगा तो आपन एक काम और कर सका चा कि आपन बीज उत्पादन कर सका चा और बीज उत्पादन जुड़वा के लिए आपने काय करनी पड़ोगो आपने खां इकले संपर्क करनी पड़ोगो बीज उत्पादन से आपने काय के लाभ मिल सके छे और बीज उत्पादन कर आपन उगते खां दे सका चा ये सारी जानकारी देवा के लिए अपने चौपाल में अपना पावना भी छे तो आपन करा ओसे अच्छी सी बातचीत।
1: नया नया विशेषज्ञ अपन बुलावा चा और वहां से जो काम की बात छे जो आपने खेती में लाभदायक बात छे वहां की जानकारी अपन लिया चा। आज अपन चौपाल में फावना छे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन साहब सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था कोठासू और आज आपने ताई जानकारी देगा भाई आपन जो बीज उत्पादन छे कशा करा और बीज को आपने खेती किसानी में काय महत्व छे। डॉक्टर साहब आपको चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
2: राम राम किसान भाइयों।
1: डॉक्टर साहब जो बोगा वो काटेगा तो आपने खेती बाड़ी में बीज को भी महत्व छे क्योंकि बीज डालेंगा तो बीज आगे आपने पैदावार होगी आपने गुणवत्ता युक्त बीज छे उनकी आपने ताई काय आवश्यकता छे उनको काय फायदो किसान के ताई मिले छे।
2: अच्छा बीज होगा जी अच्छी गुणवत्ता युक्त अगर बीज बोएंगे और फसल की देखभाल अच्छे से करेंगे तो ये निश्चित है कि अपने को पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा बीज

0: मिलेगा कहाँ से, उसकी पहचान क्या होती है? तो अच्छा बीज की पहचान उसकी जर्मिनेशन है, जैसे उसका अंकुरण प्रतिशत भी देखा जाता है। बीज उत्पादन के जो सर्टिफिकेशन के जो मानक होते हैं उनके अनुसार उनकी जो गुणवत्ता युक्त बीज की होती है, जो अंकुरण क्षमता होती है वो मानकों के अनुसार होती है। सरकारी संस्था होती है वहाँ प्रमाणित और आधारित बीज जो प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं वो उपलब्ध रहते हैं। अच्छा बीज वहीं से लें, राजस्थान राज्य बीज निगम कोटा में उपलब्ध होता है और अपना जो राष्ट्रीय बीज निगम कोटा है वहाँ पे भी है। सरकारी संस्थाओं से भी ले सकते हैं आप और आप प्राइवेट संस्थाओं से जो प्रमाणित बीज होता है चाहे वो आधारी हो या प्रमाणित हो वही से मिल सकता है।
1: अच्छा बीज बाऊंगा तो अच्छी फसल आप ले सकेंगे। फिर आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब को जैसे यहाँ पर मौसम भी परिवर्तन हो रहे हो, कहते ना जलवायु परिवर्तन हो रहे हो, तो आज भी बीमारियां नई नई तरह की फसल में लाग रही है, तो कहीं ये बीमारी जो रोधक बीज है वो भी कहीं आप मिल सके या वहाँ को कहीं महत्व रहे?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी हमारे कोटा रीजन के लिए जैसे खरीफ की बुआई का समय चल रहा है तो अभी इस समय सोयाबीन और धान का ज्यादा बुआई चल का समय आ गया है। तो अभी हमारे यहाँ पे सोयाबीन में जैसे NRC 150, GS 2172 है ना, GS 2034 है, GS 9560 की वेराइटियां उपलब्ध है जो कि रोग प्रतिरोधक और कीटों के प्रति भी रोधक होती हैं।
1: अच्छा
0: है ना, बड़ी अच्छी वेराइटी है और आप इनको राजस्थान बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम कहाँ से ले सकते हैं
1: तो वहाँ उपलब्ध चाहिए। हर बार अपन फसल बोऊंगा तो हर बार बीज की आवश्यकता पड़े डॉक्टर साहब, तो जो किसान भाई बन सके क्योंकि बार बार तो नयो बीज किसान खरीद न सके क्योंकि बहुत सी बार ऐसी स्थितियां रह सके उनके पास खरीद बागा पीसा न रहे, तो कई घर को बीज भी अपन अच्छो क्वालिटी को मतलब अच्छी किस्म को आप रखा सका जा या कोई जो बीज उत्पादन कर सके किसान अच्छो किस्म को बीज उत्पादन?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए किसान हर बार महंगी दरों पर महंगे मूल्य पर अगर बीज खरीदे ये भी मतलब पॉसिबल नहीं होता है। मैं तो किसान भाइयों से यही उनको सलाह दूंगा कि क्यों ना आप खुद बीज उत्पादक बने। सरकार द्वारा जो बीज उत्पादन के लिए स्कीम चलाई जा रही है, बीज उत्पादन में आपको कुछ बोनस दिया जाता है, क्यों ना आप अपना दोहरा लाभ लें उसमें। आप कम से कम बीज उत्पादन से भी जुड़ सकते हो और अपने स्वयं का बीज भी उसमें आप उगा सकते हो।
1: जी, तो स्वयं को बीज को उगावा कर लेकर कई परिस्थितियां छाओगी उनके लेकर या कोई भाई जैसे आप जो अन्य फसल पैदा करो तो उसे ही होगी या उनके लिए कोई स्पेशल अलग से उनका कहीं कहीं व्यवस्था जमाने पड़ेगी सर?
0: बीज उत्पादन के लिए कोई अलग से ऐसा कुछ विशेष व्यवस्था नहीं होती है, थोड़ा सा सावधानी रहती है, बाकी फसल भी वही रहती है, पानी पिलाने का तरीका वही रहता है। बीज उत्पादन में थोड़ा सा वैज्ञानिक कुछ तकनीकी है, एक दो उनको जोड़ दिया जाता है और बाकी बीज उत्पादन वो सेम ही होता है, वही फसल वही खेत वही वैरायटी।
1: अच्छा।
0: उसमें बीज उत्पादन के लिए एक तो होता है कि जो अपन जिस खेत में बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले रहे हैं उसमें जैसे सपोज इस साल हम सोयाबीन की फसल या GS 9560 वेराइटी का बीज उत्पादन प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं तो पिछले साल उसी खेत में 9560 वेराइटी या सोयाबीन नहीं उगाई गई हो, सबसे पहला ध्यान ये होता है। दूसरा होता है कि अपन पृथक्करण दूरी रहती है, तो या जो परंपरागत फसल होती है उनमें पृथक्करण दूरी ज्यादा होती है क्योंकि उनके परागकण अपनी जो बीज फसल पे आगे गिरेंगे तो वो दूषित हो जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी, है ना। इसके लिए थोड़ा सा जैसे सरसों है, सरसों में लगभग 50 और 150 मीटर तक की आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं जिसको पृथक्करण दूरी रखी जाती है। सोयाबीन गेहूं धान ये स्वपरागत फसल होती है, इनमें अपने को ज्यादा नहीं 5 मीटर 10 मीटर तक की जरूरत रहती है तो वो आसानी से मेंटेन हो जाता है। तो दूसरा नंबर आ गया पृथक्करण दूरी,
1: मतलब जैसे आप बीज को लेकर जो कार्यक्रम ले रहे यानी बीज जो बुआई अपन कर रहा है तो जो बुआई कर रहा है उनका आस पास 5-7 मीटर तक दूसरी जो किस्म की जो बीज है वो न होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, दूसरी फसल मतलब सोयाबीन की दूसरी किस्म नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप सोयाबीन का ही बीज उत्पादन प्रोग्राम ले रहे हैं तो सोयाबीन की दूसरी किस्म या सोयाबीन की फसल आसपास 5 मीटर 10 मीटर तक नहीं होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो इससे क्या है अगर वो उसकी बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अवांछित पौधों को उखाड़ना। कई बार क्या होता है कि मिक्सिंग किसी भी स्टेज पे हो जाती है, जैसे बुवाई के दौरान हो जाती है, मशीन सीड ड्रिल में हो जाती है या फिर विधान के दौरान ही हो जाता है, तो एक दो बीज ऐसे आ जाते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलता बीज को देख के। जब फसल उगती या तो मानव सत्व वृद्धि होती है या पकने तक देखा जाता है कि उसमें कोई दूसरी किस्म के पौधे जो अलग दिखाई दे रहे होते हैं उनको निकालना होता है। बीज उत्पादन में ये तीन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो स्थान का चुनाव जिसमें पिछले साल वही फसल या वही वैरायटी नहीं उगाई गई हो, दूसरा

0: आता है कि पृथक्करण दूरी, तीसरा अवांछित पौधों को निकालना
1: जी।
0: बस तीन चीजें बीज उत्पादन में विशेष ध्यान रखनी चाहिए।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बीच में की भाई कार्यक्रम ले रहा हो किसान, तो यो कार्यक्रम छाई मतलब कशो कार्यक्रम बीज को कहीं चाहिए की थोड़ी सी जानकारी।
0: बीज उत्पादन बहुत अच्छा प्रोग्राम है
1: जी।
0: मैं तो किसानों से आग्रह करूंगा कि सब लोग इसमें जुड़े
1: जी।
0: इसमें आम के आम गुठलियों के दाम होते हैं
2: हाँ, तो वो काय फायदे किसान का हो सकता है।
0: आपकी लागत भी कम रहेगी और आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा
1: जी।
0: बीज उत्पादन से किसान की आय बढ़ेगी,
1: अच्छा
0: आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और किसान अगर खेती को एक व्यावसायिक तरीके से करना भी सीख जाएगा
1: जी।
0: अगर आप बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ते हो तो आपको सरकार बोनस देती, जैसे अभी दलहनी फसलों पर 1875 रुपए एक क्विंटल ग्रेडेड सीड पर राष्ट्रीय बीज निगम और राजस्थान राज्य बीज निगम बोनस देते हैं। तिलहनों में 1100 रुपए है
1: जी।
0: अगर आप गेहूं इनकी बात की जाए तो 350-400 रुपए के आसपास ग्रेडेड सीड पर सरकार बोनस देती है,
1: अच्छा।
0: तो किसान क्यों ना उस चीज का अपन लाभ उठाए, अपनी आय में भी वृद्धि होगी, अपन एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना भी सीखेंगे, अपने को अपने घर का ही बढ़िया प्रमाणित बीज मिलेगा उसमें अपने को पूरा भरोसा होगा। और भी फायदा है कि सुगमता रहती है भाई, मंडियों में जाकर किसान जाते हैं अपना अनाज बेचने के लिए, दो दो तीन तीन दिन के लाइन में लगे रहना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपने फसल को मतलब थ्रेसिंग कर ली, अपने बोरी में भरो, आराम से वहाँ पे इंटेक हो जाता है, आप जाओ जमा करा दो।
2: यो जो कार्यक्रम से डॉक्टर साहब, तो जो किसान भाई बहन से तो इसे फायदो तो वहाँ का मिलेगो, लेकिन जुड़ कसाई के लिए कहीं कहीं आवश्यकता रह जाए, किसान के पास कई चीजा होनी चाहिए जब आपने यो कार्यक्रम मिले।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। सबसे पहले किसान को ये देखना है कि उसके पास जमीन कितनी है और कितनी जमीन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहता है। सपोज किसी किसान के पास 4 हेक्टेयर जमीन है
1: जी।
0: अगर वो 2 हेक्टेयर में या 3 हेक्टेयर जमीन में बीज उत्पादन लेना चाहता है
1: जी।
0: तो उसमें उसको उसकी जमीन की जो जमाबंदी है 3 हेक्टेयर की जमाबंदी को वहां पे राजस्थान सीड से लेना चाह रहा है या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से जहां भी लेना चाह रहा है, नकल जमा करानी होगी 3 हेक्टेयर की
1: जी।
0: अगर उसकी खुद की है तो ठीक है, नहीं तो अपने भाई बंधु जो खून का रिश्ता होता है उनसे सहमति ले ली जाती है,
2: मतलब शामिल खातो वहां को जी, मतलब वहां से सहमति ले
0: उनसे उसको 3 हेक्टेयर जमीन दिखानी है तो या तो उनसे जो अपना खून का रिश्ता होता है उनसे आप सहमति ले लीजिए, भाई है,
2: भाई बहनों से
0: या हाँ, फादर है और चाचा ताऊ है उनका, फिर आपको उसकी लीज लगानी पड़ेगी
1: जी।
0: आपके पास जमीन नहीं है तो पड़ोसी से किसी से भी आप लीज पर जमीन लेकर के और 3 हेक्टेयर का जो कागज है वो जमाबंदी आप जिस संस्था से बीज उत्पादन लेना चाह रहे हो, चाहे वो राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन हो या राष्ट्रीय सीड कॉर्पोरेशन हो या कोई प्राइवेट संस्था कंपनी हो, वहाँ आपको वो जमा कराओगे, पूरा उसमें पता, मोबाइल नंबर, आप कौन सी वैरायटी लेना चाह रहे हो, कितना लेना चाह रहे हो, पूरा उसमें डिटेल रहता है। उसको वन बी फॉर्म बोलते हैं, वन बी फॉर्म है ना, आपको वो भरना होता है, उसके बाद वो आपको बीज दे देंगे। वो फिर हम लोग हमारे वो राजस्थान सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसके पास वो जाता है, वो उसको चेक करते हैं
1: जी।
0: है ना, रजिस्टर्ड हो जाते हैं किसान, उसके बाद फिर किसान का खेत पे हम जाते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं
1: जी।
0: 2 बार इंस्पेक्शन होता है।
2: तो बुआई का फल ये हो जाए बाद में,
0: ये बुआई के बाद में,
2: अच्छा
0: आपने अपने जमाबंदी या जमीन के जो कागज हैं जितना प्रोग्राम लेना चाह रहे हो उतना आपने उत्पादक संस्था जमा करा दिए है ना, उसने आपको प्रोग्राम दे दिया, आप बुआई कर लोगे, हम उसको जो वो फाइल फिर हमारे पास आती है
1: जी।
0: हमारे मतलब राजस्थान राज्य बीज जैविक प्रमाणी संस्था जो भी हो उसके पास आएगी
1: जी।
0: हम लोग उसको चेक करते हैं, अगर कागज में कोई पूर्ति करानी होती है तो वो पूर्ति कराते हैं
1: जी।
0: फिर किसान फसल को बोने के बाद जैसे ही फसल वानस्पतिक वृद्धि पे होती है, फूल आते हैं उस समय, तो हम लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं
1: जी।
0: वहां जाके देखते हैं कि किसान कौन सी वैरायटी लाया, इसको बोलते हैं सोर्स सत्यापन
1: जी।
0: कि किसान कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी लाया, कहां बोई, कितनी बोई, कौन से टैग बैग लाए, वो सब सत्यापन हो जाता है,
2: अच्छा है ना। जो बीज किसान बुआई करोगे वो भी या तो संस्था देगी
0: हाँ।
2: संस्था से लेने पड़ोगे उनको, तो उनका जो टैग जो वो संभाल कर रखाने हाँ। होता।
0: पहला इंस्पेक्शन इसलिए किया जाता है कि किसान के सोर्स सत्यापन बोलते हैं उसको
1: जी।
0: कि आपने कौन सी वैरायटी ली, कितनी ली, आपके टैग, आपने आधारित बीज लिया है या प्रमाणित लिया है या प्रजनक बीज लिया है, उसको सोर सत्यापन बोलते हैं, वो हो जाता है। फिर दूसरा इंस्पेक्शन होता है, इसको अंतिम निरीक्षण बोलते हैं। अंतिम निरीक्षण में फसल आपको देखा जाता है। पहले इंस्पेक्शन में बीज प्रमाणिक अधिकारी आपको मतलब निर्देश देता है कि जैसे उसमें कोई रोगिंग प्लांट होते हैं उस टाइप के जिनको बोलते हैं, दूसरी किस्म के या दूसरी फसलों के कोई

0: पौधे दिखाई दे रहे होते हैं तो उनको उखाड़ने के लिए या निकालने के लिए दे दिए जाते हैं। अब आप फाइनल इंस्पेक्शन होता है उस समय बिल्कुल फसल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब उसको प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए।
1: अंतिम जो निरीक्षण करे छे आप तो वो खेत हम क्यों फसल भाई पाक बागी समय करे छे या उनको तोड़ फली करे छे?
0: अंतिम निरीक्षण फसल पकने पर किया जाता है।
1: अच्छा, मतलब कटाई का पहले का जो समय रह जाए
0: कटाई से पहले उसमें देखा जाता है कि हमने किसान कहीं फसल में दूसरी वैरायटी के या दूसरी फसल के अवांछित पौधे तो नहीं है। हमने किसान को जो निर्देश दिए थे वो निर्देश पालना की गई है कि नहीं, मतलब कुछ मिला के ये देखा जाता है कि बीज फसल प्रमाण के योग्य है कि नहीं है, हम उसको पास कर देते हैं कि फसल बढ़िया है, प्योर है, सारा का सारा किसान ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार पूरी प्रक्रिया फॉलो की है तो उसके बाद उसको पास कर देते हैं, अनुमानित उपज दे दी जाती है ना। जब फसल किसान काटता है उस फसल उत्पाद को जिस संस्था से उसने बीज लिया है वहाँ पे जमा कराता है, कई संस्था से किसान ने बीज उत्पादन का प्रोग्राम लिया है तो वो वहाँ जमा कराएगा। उसमें प्रक्रिया ये रहती है कि जब बीज मान लीजिए उसने 100 क्विंटल जमा कराया है और 100 क्विंटल का जो 80% पैसा होता है वो जमा कराने के वक्त मिल जाता है रोसीड पे, बाकी 20% राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन का तो होता है कि वो पैकिंग होने के बाद देते बचा हुआ और NSC देती है ग्रेडिंग सीड पे।
1: अच्छा, मतलब उन किसान की सीड की जो ना जमा कराए क्योंकि ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग हो बाद में पैकिंग हो जाओगी ऊपर टैग लाग जाओ उनके बाद 20% फीस किसान का टाइम
0: पूरा,
1: तो उनमें कोई कमी बेसी या कहीं कहीं निकल गई ऊँट की तो फिर उनके किसान पर कहीं कहीं जुर्मानो या कहीं कहीं व्यवस्था सी?
0: ग्रेडिंग होती है उस समय किसानों का सैंपल ही आता है उस लॉट का
1: जी,
0: उस लॉट को फिर बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है, वहाँ से फिर उसके परिणाम आते हैं। अगर कई बार किसान ने असावधानी बरती है बीज उत्पादन के दौरान
1: जी,
0: अगर उसने उसमें रोगिंग नहीं करी है मतलब अवांछित पौधे नहीं निकाले चाहे वो उसी फसल की दूसरी वेरायटी हो या दूसरी फसल हो है ना, अगर उसमें असावधानी कहीं बीज भीग गया ऐसा कुछ हो गया तो परीक्षण प्रयोगशाला में अगर वो फेल हो जाता है तो फिर वो लॉट किसान को वापस कर दिया जाता है।
1: अच्छा, वो तो वो 80% पैसा जो किसान का टाइम मिले
0: वो वापस जमा कराना,
1: अच्छा वापस जमा कराने पर तो किसान फिर उनका टाइम मंडी में ही बेच सके फिर भाई कहीं भी खुला में उनका टाइम बेच सके जो
0: खुला में सकता।
1: अच्छा, फिर किसान का टाइम कोई ना कोई तकनीकी सहायता भी मिल जाए में कार्यक्रम ले लो, कार्यक्रम लेवा के बाद में कोई तकनीकी सहायता सरकार की तरफ से या संस्था की तरफ से मिलती हो?
0: किसान भाइयों के लिए तकनीकी सहायता सिर्फ यही होती है कि अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती किसी तरह की जानकारी चाहिए तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र है या अनुसंधान केंद्र है इन्हों पर ट्रेनिंग होती है
1: जी।
0: तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से बीज उत्पादन का कार्यक्रम का क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या सावधानी चाहिए है ना, उसमें क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीजों के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर भी अगर किसान की नहीं समझ आए तो कभी भी किसान हम लोगों से फोन से बात कर सकता है। तो
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप बीज उत्पादन कर लियो अब उनकी विश्वसनीयता को कैसे अपन पतो लगाऊं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया। बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसकी हर अवस्था पर बहुत ही सावधानी रखी जाती है। जब खेत का सिलेक्शन किया जाता है बुआई से लेकर के कटाई तक सारी सावधानियां रखी जाती हैं, रोगिंग की भी की जाती है, थ्रेसिंग के टाइम पे सावधानी रखी जाती है, कहीं ना कहीं किसी दूसरी फसल का या फिर उसी फसल की दूसरी वैरायटी की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। बाई दे कभी हो भी जाती है तो बीज परीक्षण प्रयोगशाला में सैंपल लेके भेजा जाता है, वहाँ उसको टेस्ट किया जाता है, बीज प्रमाणीकरण के जो मानक हैं अगर उनसे ज्यादा होता है बीज लॉट वहीं फेल हो जाता है, किसान को वापस कर दिया जाता है, अगर पास हो जाता है तो फिर बीज प्रमाणीकरण संस्था उसको सर्टिफिकेट देती है उस लॉट को
1: जी।
0: अगर प्रमाणित है तो उसके लिए नीले कलर का टैग रहता है
1: जी।
0: उस बैग पे लगा होता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सर्टिफाइड होता है वो, अगर आधारी बीज है तो उस बैग पर फाउंडेशन का जो आधारी बीज का सफेद टैग लगा होता है और एक प्रमाण भी रहता है उसमें, हम प्रमाण पत्र देते हैं इसको सेक्शन 9 सर्टिफिकेट बोलते हैं
1: जी।
0: वो पूरे प्रमाण होता है। किसान भाई अगर कोई भी बीज खरीद रहे हैं ना उससे पहले उसमें बैग पे ये देख लेंगे उसमें सील लगी है कि नहीं
1: जी।
0: और उसमें टैग लगा है कि नहीं, अगर नीला टैग है तो प्रमाणित बीज है, सफेद टैग लगा है तो इसका वो आधारी बीज है।
1: आधारी प्रमाणीकरण बीज में फर्क डॉक्टर साहब?
0: आधारी बीज में और प्रमाणीकरण बीज में फर्क ये होता है कि आधारी बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता होती है
1: जी
0: वो 99.5% होती है
1: जी,
0: और आधारित जो प्रमाणित बीज होता है उसकी 99% होती है।
1: अच्छा, इतना मतलब आधारित मतलब उनकी आनुवंशिकता भी वो लगभग लगभग बराबर। हाँ,
0: आधारित बीज थोड़ा ज्यादा शुद्ध होता है
1: जी,
0: प्रमाणित बीज थोड़ा सा कम रहता है।
1: एक ही बैग पर दोनों टैग हो सकते या अलग अलग?
0: अलग अलग बैग होते हैं, फाउंडेशन अलग होता है और ये प्रमाणित बीज

0: वेग अलग होता है
1: जी। अब जैसे आपन बढ़िया बीज की बात करी रहे थे डॉक्टर साहब, और अपना बारो सोयाबीन की फसल जो से खरीफ की वहाँ की बुआई करेंगे, कोई धान की बुआई करोगे, तो अपना क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जो किस्म है वो कहीं कहीं से जिससे ज्यादा ज्यादा किसान अपना लाभ ले सके, किसी किस्म को काम मिले?
0: कोटा क्षेत्र में
1: जी
0: PB 1509, PB 1692
1: जी,
0: PB 1718, PB 1895 और एक अभी नई वेराइटी आई है PB 1401। कोटा रीजन के लिए सारी किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं
1: जी।
0: 1692 बहुत अच्छी वेराइटी है, उसमें ड्यूरेशन भी कम रहता है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, कम से कम 10 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से पैदावार आ जाते हैं।
1: अच्छा, तो ये जो किसान भाई बहन आपकी बातचीत सुन रहा है, अंत में सलाह का तौर पर यानी कहीं खबो चाहो छो आप?
0: मेरा किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है
1: जी
0: कि बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े
1: जी,
0: अपनी आमदनी बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने, और बीज उत्पादन कार्यक्रम एक तरह से देश सेवा होती है
1: जी।
0: अच्छा बीज उत्पादन करें और देश के बीज उत्पादन कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहब आपने बताए छे, और किसान भाई बहन जरूर यह बात अमल में लाओगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेगो। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर।
0: राम राम।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ जी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आभार देखो अपन ना सुनिए अच्छी अच्छी वार्ता। और डॉक्टर साहब ने एक चीज बताई थी कि अपन बीज उत्पादन से जुड़कर अपन दोनों फायदा ले सका चाह और अच्छो बीज उत्पादन करके अपन देश की प्रगति कर सका चाह, देश में सहयोग कर सका चाह। किसान मायो कहने के कारण अपन स्वच्छ रहेगा तो आपनो जीवन अच्छो रहेगो, साथ में अपनी धरती माता भी स्वच्छ रहेगी। इसलिए अपनी स्वच्छता को ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में शुरू कर गयो छो। ये एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के क्रम में हो। एको मुख्य उद्देश्य देश का में जो खुले सोच है उसे मुक्त करबो और कचरा को वैज्ञानिक प्रबंधन करबो छे और नागरिक का ताई वहां के साथ वहां की स्वच्छता वहां के प्रति सकारात्मक बदलाव करबो छे। स्वच्छ भारत अभियान एक नारोबी के क्रम एक कदम स्वच्छता की ओर। तो अभियान को मुख्य उद्देश्य खुला में सोच से मुक्ति और समाप्त करबो और व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय बनावो छे। कचरा को उचित प्रबंधन करवो छे। ठोस और तरल जो कचरा हो चुका आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से निपटारो करवो छे। लोगों की आस्था में सुधार लावो और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता पैदा करवो ई अभियान को मुख्य उद्देश्य छे। गंदगी के कारण हो वाली जो बीमारियां छे वगते कम करवो और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लावो ई स्वच्छ भारत मिशन को उद्देश्य समझो। और स्वच्छता में ही खजाने के ईश्वर निवास करे थे तो अपन स्वच्छ रेवा मस्त रेवा और अपना तन के ताई मन के ताई देश के ताई राज्य के ताई गांव के ताई स्वच्छ रखा और अच्छो रखा। कितना मैं देखो अपने चौपालों भगत है तो आपन सुना चाहिए प्यारो तो लोक भजन जगन्नाथ गोचर की आवाज में।

किसान मनवाया, देखो आज अपनी चौपा भगत करते भी कौन है, तो आज तो चला खाल फिर मिलेंगे नई नई बातों के साथ, नए नए लोगों के साथ, तब तक राम राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 इस समय स्टूडियो की घड़ी में आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी।

लोक संस्कृति और लोक परंपराओं की मधुर महक से सजा कार्यक्रम आपका लोक संगीत। वाकई में लोक संगीत केवल गीत नहीं है, ये हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारे गांवों की आत्मा और हमारी संस्कृति की पहचान है। खेत खलियानों की यहाँ पर हरियाली है, रेगिस्तान की तपिश है, पर्व त्योहारों की उमंग है और जीवन के हर रंग की झलक है। और कहा भी तो गया है, लोक गीतों में बसती है जन जन की कहानी, यही है हमारी संस्कृति की सच्ची निशानी। आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा की मधुर आवाज में ये लोकगीत।

माटी की सौंधी सौंधी खुशबू सुरों में घुल कर के आती है। लोक संगीत की ये मधुर तान हर दिल को छू जाती है। दोस्तों, लोक गीतों में प्रेम है, विरह है, उत्सव है, भक्ति है और जीवन का दर्शन भी है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी इन गीतों की लोकप्रियता बनी हुई है। तो चलिए जुड़ते हैं इनकी जड़ों से, अपनी संस्कृति को महसूस करते हैं और सुनते हैं लोक संगीत की ये मधुर प्रस्तुति।

श्रोताओं, लोक सुरों की ये सुरीली महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में हमने अपनी मिट्टी की महक, लोक जीवन की सरलता और संस्कृति की समृद्ध विरासत को लोक गीतों के माध्यम से महसूस किया। वाकई में लोक संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी परंपराओं, भावनाओं और जीवन के मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। जब तक लोक गीतों की गूंज बनी रहेगी तब तक हमारी संस्कृति की पहचान भी बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम से मैं आपकी अपकी उद्घोषिका नीतू कुमावत आपसे विदा लेती हूँ। अपने लोक गीतों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम अपनी पहचान को सहेज सकते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं।

FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। आइए श्रोताओं सुनते हैं चित्रपट संगीत।

आकाश में बिखरे सुरों की वो मधुर छटा, दिलों को छूती धुने और भावनाओं को शब्दों में पिरोते गीतों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। जी हाँ, 45 मिनट तक हम साथ रहेंगे हिंदी सिनेमा के सदाबहार मधुर और लोकप्रिय गीतों का। ये सुरीला सफर है चित्रपट संगीत। तो चलिए आप सभी के रेडियो सेट यानी कि FM 102 पर श्रोताओं, पहला गीत फिल्म बॉर्डर, मधुर आवाज रूप कुमार राठौर की। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और अपने संगीत से सजाया अनु मलिक ने। तो आइए मिलकर सुनते हैं FM 102 पर ये गीत।

वाकई में श्रोताओं, संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात को कह देता है, और फिल्मी गीत वो एहसास है जो हर पल को यादगार बना देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की मिली जुली आवाजों में।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा की पहचान उसकी कहानियों से जितनी है उतनी ही उसके गीत और संगीत से भी होती है। फिल्मी गीत हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमारी यादों का हिस्सा है और हमारी भावनाओं यानी कि फीलिंग्स की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति भी है। तो चलिए सुनते हैं एक बेहतरीन सा गीत, उदित नारायण अलका याग्निक की।

श्रोताओं कहते हैं कि अगर फीलिंग्स को पंख मिल जाए तो वो गीत बन जाती है, संगीत बन जाती है, और जब वही संगीत पर्दे पर किसी कहानी के साथ जुड़ता है तो जन्म होता है फिल्म संगीत का। सिनेमा की दुनिया में कई चेहरे आते हैं,

कई किरदार बदल जाते हैं, लेकिन गीत यानी कि गाने कभी पुराने नहीं होते। समय की सीमाओं से परे जाकर के यादों में कहीं ना कहीं अपना घर बना लेते हैं। किसी शाम की तन्हाई में, किसी सफर की खामोशी में, किसी खुशी के जश्न में या किसी बिछड़न के पल में अक्सर कोई ना कोई फिल्म गीत हमारा हम सफर बन ही जाता है। अभी आपके सफर में है आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत, और सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर सोनू।

बन ही जाता है। अभी आपके सफर में है आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत, और सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर सोनू निगम की मधुर आवाज़ों में।

वाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं उन सुरों की जो फिल्मों को अमर बनाते हैं, उन धुनों की जो पीढ़ियों को जोड़ती है, और उन गीतों की जिन्हें सुनकर के कभी दिल मुस्कुरा उठता है तो कभी आंखें नम हो जाती है। कहते हैं कि फिल्में जो होती हैं वो काफी घंटों की होती है, लेकिन उनके गीत कई दशकों तक होते हैं और वो कई दशकों तक जीते भी हैं। तो चलिए शब्दों और सुरों के इस अद्भुत संगम का आनंद लेते हैं। कुछ धुनें यादों के पन्ने पलटेंगी, कुछ गीत पुराने दिनों से हमको मिलवाएंगे, और कुछ सुर दिल की खिड़कियों पर आज दस्तक देंगे। अगला गीत उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाजों में।

लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-232-442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी जनवाणी।

बाकी मैं श्रोताओं, हर गीत की अपनी एक उम्र होती है, एक कहानी होती है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो उम्र से नहीं एहसासों से जिए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म नमस्ते लंदन।

श्रोताओं, सुरों की इस खूबसूरत यात्रा का पड़ाव यहीं पर समाप्त होता है। गीतों की ये महफिल भले ही आपके लिए सिमट रही हो, लेकिन इन धुनों की गूंज आपके दिलों में देर तक बनी रहेगी। कहते हैं कि कुछ गीत खत्म नहीं होते, वे बस यादों में उतर जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको उन नगमों का साथ दिलाया जिन्होंने कभी आपको मुस्कुराना सिखाया, कभी भावनाओं को आवाज दी और कभी जीवन के अनकहे पलों को शब्द दिए। इसी उम्मीद के साथ आज का फिल्म संगीत का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम शायद आपके मन को कहीं ना कहीं छुआ होगा। तो चलिए, हमको आप दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत, विदा लेती हूँ आपसे। सुरों का रिश्ता दिल से होता है और दिल की बातें कभी खत्म नहीं होती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प।

0: ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के 3रे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद

0: में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102 और साथ 103.6 मेगाहर्ट्ज़ मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात रानी के फूल।

रात रानी के फूल कार्यक्रम सुनने वालों को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में फिल्मी गानों को हम आपके लिए कुछ अलग हटकर पेश करते हैं। गानों को अलग अलग नजरिए से आप तक पहुंचाते हैं। हमारा ये दृष्टिकोण कभी गीत के बोलों पर केंद्रित होता है, तो कभी उसकी संगीत रचना पर, या फिर कभी उसके गायन की शैलियों पर। आज हम एक शब्द पर कुछ गीत लेकर हाजिर हुए हैं, परदेश। एक ऐसा शब्द जिसके साथ अपना घर, गांव और चाहने वालों को छोड़ने की विवशता जुड़ी है, और कभी ये परदेश शब्द नायिका के हृदय में विरह की टीस बनकर उभरता है।

किसी के दिल पे अपने प्यार का नामांकन होगा, हमारी हसरतों का भी कहीं सीमांकन होगा। मैं मन की देहरी को शेष रंगों से बचाता हूँ, तेरे पांवों की मेहंदी से यहाँ चित्रांकन होगा।

तेरा घर वो भूल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। परदेसी हो, शहर नया हो, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीदों के जुगनू जैसा कुछ है उसकी आंखों में, तूफानों में कोई दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। डरते डरते नाम लिखा था हमने जिसकी डाली पर, अब तक भी वो पेड़ हरा हो, ऐसा भी हो सकता है।

न जाने क्यों मुझे ऐसा लगे है, वो मेरा आशना जैसा लगे है। तुम्हारे बिन यहां वीरानियां हैं, हमारे बिन वहां कैसा लगे है। तू हंसता बोलता होगा कहीं पर, यहां तन्हाई का मेला लगे है।

भाग का रंग चढ़ा है फूलों पर, शबनम गिरी है कमल की पंखुड़ी पर, चुनरिया उड़ती है सतरंगी ख्वाबों की हवाओं में, एक पगली तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ती है इंद्रधनुष में रंग भरने के लिए, समंदर की छुवन को तरसती है एक सूखी हुई नदी की देह।

तुम्हारे जाने के बाद ही ढह गया गांव का पीपल, तुम्हारे जाने के बाद से उदास है पनघट का कुआं, तुम्हारे जाने के बाद सूख गई वह बारहमासी नदी जिसकी धार जवान होती थी तुम्हारी पगतलियों के स्पर्श से, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी तो नहीं बचा गांव में।

प्रोग्राम में अभी तक आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म जब जब फूल खिले में, अनवर की आवाज में फिल्म हम हैं लाजवाब का गीत, लता मंगेशकर को फिल्म प्रति

प्रोग्राम में अभी तक आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म जब जब फूल खिले में, अनवर की आवाज में फिल्म हम हैं लाजवाब का गीत, लता मंगेशकर को फिल्म प्रतिज्ञा में, आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म परदेसी में, शमशाद बेगम को फिल्म मेला में, मोहम्मद रफी को फिल्म सरगम में और लता मंगेशकर को फिल्म अर्पण में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल FM 102 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा से रात की खामोशी में महकते हुए गीतों का कार्यक्रम।

प्रेम की बेल मुरझाने लगी परदेसी बादल की प्रतीक्षा में। वह पीली पड़ती रही निर्दयी सावन के इंतजार में। प्रेम की उस लता ने अब भी बचा रखी है नमी अपनी जड़ों में। उसे उम्मीद है एक दिन उसके हिस्से का सावन लौट आएगा। एक दिन फिर से महकेगी सांसों की चंपा। एक दिन फिर से मुस्कुराएंगे मन की हरी हरी दूब पर

भाग का रंग चढ़ा है फूलों पर, शबनम गिरी है कमल की पंखुड़ी पर, चुनरिया उड़ती है सतरंगी ख्वाबों की हवाओं में, एक पगली तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ती है इंद्रधनुष में रंग भरने के लिए, समंदर की छुबन को तरसती है एक सूखी हुई नदी की देह।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, और कुछ अच्छा सा सुनने के लिए हमेशा ट्यून कीजिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल FM 102 मीडियम वेव 212.31 मीटर, और अब आपके मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन AIR, देश दुनिया में कहीं भी अपनी भाषा, अपना संगीत, अपना रेडियो चैनल आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

आंखें पथरा गई उसकी राह तकते हुए। कोई झोंका हवा का जब पर्दा हिलाता है तो एक आस दौड़ती है दरवाजे तक, तुम आओगे एक दिन तड़प कर अपने गांव की मिट्टी से मिलने। लेकिन जब लौटोगे तब हमारे खेतों में नहीं होगी सरसों, अब वहां उगने लगा है सीमेंट और इस्पात का एक निर्दयी जंगल।

0: मध्यंतराल के बाद आपने इस कार्यक्रम में जो गीत सुने उनका विवरण किशोर कुमार फिल्म परदेश में, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर फिल्म प्यासा सावन में, आशा भोसले और मोहम्मद रफी फिल्म फागुन में, लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म मिस्टर नटवरलाल में और लता मंगेशकर को फिल्म हम सफर में। श्रोताओं, रातरानी के फूल कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए परदेश शीर्षक से कुछ गाने। इस कार्यक्रम का आलेख, संपादन और प्रस्तुति रामनारायण मीणा की। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात रानी के फूल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।
2: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 07442322442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी जनवाणी लाभवाणी।
0: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही हो।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई हैं।

0: ले सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर, पर भी आवाज दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और

0: seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 102 और ज़्यादा 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडिया वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।